प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप। हेलो हाय वेलकम नमस्ते रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वो वक्त शुरू हो चुका है जिसे हम कहते हैं हमारे थर्सडे का रिवाइंड बटन। एंड जस्ट इन केस ये आवाज आपके कानों तक सैटरडे को पहुंच रही है इसका मतलब आपने ऑनकोर में ट्यून इन किया हुआ है। वेल मस्ती 90s मिक्स टेप हमारा फेवरेट वाला टाइम जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है और मैं हूँ 90s वाली अंतरा यहाँ पर आपके साथ। भाई ये वही शो है जहाँ पर सिर्फ गाने नहीं प्ले होते हैं, यहाँ पे यादें प्ले होती हैं। कभी सोचा है 90s को याद करते ही कितना सब कुछ हमें याद आता है, यू नो पिक्चर्स कुछ याद आते हैं, आवाजें याद आती है, सुबह वो दूध वाले की साइकिल की घंटी याद आती है, स्कूल के असेंबली की बेल याद आती है, दूर से आती प्रेशर कुकर की सीटी उसकी याद आती है, गली में आइसक्रीम आइसक्रीम और वो कुल्फी वाले के ट्रिंग ट्रिंग उसकी आवाज आती है, कैसेट रिवाइंड होने की वो घर घर वो आवाज आती है, दूर दर्शन के सिग्नेचर ट्यून की आवाज, लैंडलाइन की वो ट्रिंग ट्रिंग, हर आवाज का मतलब होता था, हर साउंड के साथ एक रूटीन जुड़ा होता था और बिना देखे ही पता चल जाता था कि भाई अब क्या होने वाला है। 90s का बॉलीवुड भी कुछ ऐसा था, नहीं फिल्म शुरू होने से पहले ही बैकग्राउंड म्यूजिक बता देता था कि रोमांस आने वाला है या एक्शन या कॉमेडी। म्यूजिक सिर्फ सुनाई नहीं देता था, कहानी भी सुना दिया करता था और शायद इसीलिए 90s की मेमोरी इतनी ज्यादा हमें ताजी टाइप की एक फीलिंग देकर जाती है क्योंकि वो सिर्फ आंखों में नहीं कानों में भी बसी हुई है। आज नोटिफिकेशंस की आवाज सुनते ही फोन उठ जाते हैं, तब एक साइकिल बेल सुनते ही दोस्त बाहर भाग के आ जाते थे, एक विसल सुनते ही क्रिकेट मैच शुरू हो जाता था, एक कैसेट के क्लिक की आवाज का मतलब होता था कि अब गाने शुरू। सो बस चलिए ये सिर्फ यादों को नहीं उनकी आवाजों को भी रिवाइंड करते हैं, कुछ बचपन, कुछ मोहल्ला, कुछ शरारते, कुछ वो हसीन हसीन प्यारी प्यारी हमारी यादें बहुत सारे स्माइल के साथ। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप एंड यस बने रहिए मेरे साथ और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: भाई यहाँ पे 90s की बात हो रही है जहाँ पे जुगाड़ वॉज ऑलवेज द विनर, डोंट यू थिंक सो? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप, दैट इज राइट। 90s के बच्चों के पास रिसोर्सेज शायद कम होंगे, लेकिन आइडियाज भाई हमारे पास अनलिमिटेड हुआ करते थे। और अगर कोई चीज सच में हमारी जनरेशन को डिफाइन करती है ना, तो वो है जुगाड़। स्कूल में उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, पेंसिल छोटी अगर हो जाए तो उसके पीछे पेन का कैप लगा दो, राइट? याद आया आपको? पेंसिल इतनी छोटी हो जाती थी शार्पन कर करके कि प्रॉपरली पकड़ना उसको मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब उसको फेंकेगा कौन? फेंकते थे तो हम बिल्कुल, हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं था फेंकने का। एक एम्प्टी पेन का कैप उठाओ, पेंसिल को उसमें फिट करो और लो जी, ब्रांड न्यू लॉन्ग पेंसिल रेडी। फनी पार्ट मुझे ये लगती थी कि ये किसी ने हमें सिखाया भी नहीं था, क्योंकि देखिए कोई यूट्यूब नहीं था, कोई DIY वीडियोज नहीं थे, कोई लाइफ हैक्स बताने वाला नहीं था। बस एक एक बच्चा करता था और अगले हफ्ते इट्स लाइक अ ट्रेंड, राइट? और उस वक्त हमें लगता था कि क्या ही हमने इन्वेंशन कर डाला है। सच कहूं 90s के बच्चे ना चीजें जल्दी रिप्लेस नहीं करते थे, हम उनकी लाइफ बढ़ा दिया करते थे। हाउ अबाउट दैट, है ना? सच अ ब्यूटीफुल वे टू पुट इट, राइट? पेंसिल छोटी तो कैप लगा दो, इरेजर आधा हो गया तो दोनों टुकड़े साथ में यूज कर लो, क्रेयॉन टूट गया लेकिन कलर तो फिर भी करेगा ना, क्योंकि उस वक्त एक चीज की वैल्यू होती थी और जब तक वो चल सकती थी चलती थी। और जब पेंसिल आधी होती है तो लोग नहीं निकाल लेते हैं, और कई कई बार तो मतलब खो जाती है, तो इतना ज्यादा वो नहीं होता है कि अरे पेंसिल खो गई। और तब पेंसिल का रिटायरमेंट भी हम डिसाइड क्या करते थे हम। ऑनेस्टली वो पेन कैंप वाली पेंसिल हाथ में पकड़ कर लिखने का अलग ही स्वैग होता था। नहीं लगता था इंजीनियरिंग भी कर ली, राइटिंग भी हो गई। इसीलिए आई थिंक जब भी मैं बात करती हूँ तो 90s का बचपन इतना ज्यादा क्रिएटिव लगता है, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स देखते कम थे, सोल्यूशन पहले हमारा बन जाता था। ऑनेस्टली मतलब सच्ची में आज भी हम लोग जब बड़े हो गए हैं, अडल्ट लाइफ जी रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ हो गया उसका हम जुगाड़ कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। इट इज जस्ट टैटूड इन आर होल पर्सनैलिटी, वी ऑलवेज फिगर अ वे आउट सम हाउ, एंड इजंट दैट अमेजिंग एंड फैंटास्टिक, राइट? मुझे तो बहुत ही कूल लगता है आज भी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड। भाई ये सारी बातें तो चलती रहनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में 90s वाले गाने भी चलते रहने चाहिए। नहीं, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
3: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: ये वाली चीज तो इतनी ज्यादा हो रखी है कि मैं क्या ही बताऊं। और आपने भी किया होगा इफ यू हैड अ साइकिल व्हेन यू वर ग्रोइंग अप 90s में। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ, और यहाँ चल रहा है क्या, ऑफ कोर्स मस्ती 90s मिक्स टेप। इस वक्त और क्या ही चलेगा भाई। 90s में साइकिल चलाना इट्स जस्ट वॉज नॉट अ ट्रांसपोर्ट, मात्र एक वैसा कुछ नहीं था, एक फ्रीडम वाली फीलिंग आती थी कि हम थोड़े से बड़े हो गए। कितना शौक था ना कि हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसा कर लेगा, हम बड़े हो जाएंगे तो हु न्यू अडल्ट।

फुल स्पीड में आप चला रहे साइकिल, हीरो एंड हीरोइन वाली फीलिंग आपको आ रही है और अचानक खड़ाक पेडल जो है वो हल्का हो गया, फिर वो सर सर सर सर ऐसे चलता रहता है एंड फिर हमें आ जाता है यार चेन उतर गई यार। अब आज की तरह रोड साइड असिस्टेंस थोड़ी ना थी उस टाइम पे, ऐसा कोई ट्यूटोरियल भी नहीं देख सकते थे कि हाउ टू पुट द साइकिल का चेन बैक, नहीं गूगल नहीं है, बस साइकिल को उल्टा करना और ऑपरेशन शुरू। एक हाथ से चेन उठाओ, दूसरे हाथ से पेडल घुमाओ। अगर जिस जिसने कर रखा है ना, दे नो द ड्रिल राइट, थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा सा ऐसे और घुमाओ और फिर बड़ा ही मुश्किल से चेन अपनी जगह पर। लेकिन सक्सेस के साथ एक चीज गारंटीड मिलती थी, काले काले ग्रीस वाले हाथ, और वो ग्रीस भी ऐसी एक बार लग गई तो पानी से नहीं जाती थी, और कपड़ों पे लग गई तो फिर तो भाई साहब जो डांट पड़ती थी घर पे, क्योंकि वो मम्मी को वो दाग हटाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। सो हाथ पे लग गई तो यू नो साबुन से 3-4-5 बार आप धोए जा रहे हो, लेकिन वो एक वो चिपचिप वाली फीलिंग आती ही रहती थी। तो अच्छा, उस टाइम पे इफ यू जस्ट रियलाइज द फीलिंग, किसी को घिन टाइप के ऐसे के ऐसे वाला फीलिंग उतना नहीं आता था। चेन ठीक हो गई, बस फिर साइकिल पे बैठो एंड अपना जो है चला रहे थे, लेट्स कंटिन्यू। 90s के बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना नेचुरली आई थिंक आता था। टायर में हवा कम है तो पंप ले आओ, बेल नहीं बज रही तो ठोक पीट के उसको चला दो, चेन उतर गई तो हाथ गंदे होंगे कोई बात नहीं होने दो, चढ़ानी तो है क्योंकि साइकिल तो हमें चलानी ही चलानी है, एडवेंचर रुकना नहीं चाहिए। इतना रियल लगता है ना 90s का बचपन, हम सिर्फ खेलते नहीं थे, चीजें ठीक भी करते थे और हर रिपेयर के बाद कॉन्फिडेंस डबल हो जाता था। आज हाथ यस साफ रखते हैं, लेकिन तब ग्रीस के वो काले निशान भी एक मेडल के जैसे लगते थे, एक ऐसा प्रूफ कि आज भी पूरा दिन बाहर जी भर के हमने जिया। साइकिल लाओ रे ऐसा ही ऐसे मूड कर गया। इतनी सारी बात करने के बाद अक्सर मेरा ऐसा जो है मूड बदल सा जाता है, आपका भी बदलता होगा आई एम श्योर। स्टे ट्यून्ड रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: असल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: And while I was talking about साइकिल की चेन उतरना और हाथ ग्रीस से काले हो जाना एंड दाग लगना, एक और दाग की याद आ गई, क्योंकि उस टाइम पे तो हम ये भी कहते थे ना कि ये दाग तो बड़े अच्छे हैं, मम्मी ये नहीं कहती थी। That is for sure. Radio Masti 24/7 live पर मस्ती 90s mixtape आप सुन रहे हो, मैं हूं अंतरा आपके साथ यहाँ पर। और भाई 90s के स्कूल लाइफ का ये अनऑफिशियल बैच ऑफ ऑनर, वो स्कूल यूनिफॉर्म पे नहीं, यूनिफॉर्म पे भी दिखता था लेकिन उंगलियों पे पहले दिख जाता था, वो ब्लू ब्लू हमारे इंक वाली उंगलियां। जिस दिन फाउंटेन पेन या इंक पेन यूज करना हमारा शुरू हुआ जिंदगी में, एक तो वो फीलिंग आती थी कि अब हम बड़े हो गए हैं, और एक एक्साइटमेंट से नहीं होती थी, क्योंकि क्या है ना कि आपका जब क्लास चेंज हो रहा है और आप नए टर्म के लिए जा रहे हो तो आपको पता होता था कि ओ अब से तो हम पेंसिल छोड़ के पेन से लिखा करेंगे। दैट एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग टू अ स्टेशनरी शॉप एंड एक्चुअली बाइंग योर फर्स्ट फाउंटेन पेन, आई मीन आई एम गेटिंग गूज़बम्स रिमेम्बरिंग दैट। इट यूज टू बी सो अमेजिंग, दैट फीलिंग यूज टू बी सो अमेजिंग एंड सो सैटिस्फाइंग। एंड वो जो एक आता था ना, अब तो हम ऐसा कहेंगे, लेकिन इट ऑल केम विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। ग्रोन अप फीलिंग के साथ ये गिफ्ट भी फ्री में आता था, इंक का लीक, वो चेलपार की वो आती थी इंक की बाटल। सो कभी निब से हो रहा है, कभी कैप के अंदर से आ रहा है, कभी शर्ट की पॉकेट में फैल जा रहा है, कभी सीधा हाथ पे आ जा रहा है, फिर पूरा दिन हमारा जो फिंगर और थंब ब्लू कलर के, मतलब क्लास में देखते ही समझ में आ जाता था कि भाई आज तो होमवर्क इंक पेन से लिखा गया है। अच्छा, वॉशरूम में जा जा के हाथ तो ज़रूर धोया करते थे साबुन लगा के एंड रगड़ के उसको, लेकिन वो ब्लू स्टेन इतनी आसानी से वी ऑल नो जाता नहीं था। एक दो दिन तो परमानेंट टैटू की तरह वो साथ रहता ही रहता था। एंड देन यू नो डांट भी पड़ती थी घर पे जब रात को, यू नो बैग तैयार करते वक्त हम जब रिफिल किया करते थे उससे, तो फिर स्पिल हो जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन इनिशियली यू आर लर्निंग टू डू सो यू विल मेक मिस्टेक्स एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट वो हमारे लिए डांट के साथ आता था। बट वेल सो वेल इट यूज टू बी लाइक अ सेरेमनी राइट, इंक की बॉटल खोलो, पेन खोलो, रिफिल करो और प्रे करो कि टेबल क्लॉथ बच जाए और साथ में हम भी। आजकल तो उसके बाद तो काफी सारा इवॉल्व हुआ राइट, जेल पेन्स आए एंड पायलट पेन्स आए, रोलर पेन्स आए, इट्स सो कन्वीनियंट राइट। बट इंक पेन को यूज करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी और एक प्राइड भी आती थी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ब्लू फिंगर्स देखकर कभी एम्बेरसमेंट नहीं होती थी, उल्टा लगता था कि भाई आज काम किया गया है हमारा। हाय राम, 90s के स्कूल मेमोरीज सिर्फ आई डोंट थिंक सो रिपोर्ट कार्ड्स में थे, उंगलियों के उन नीले निशानों में भी लिखी हुई थी हमारे। स्कूल बैचेस तो साल बदलते ही बदल जाते थे, लेकिन इंक के वो स्टेन्स और उनके साथ जुड़ी वो यादें वो कभी नहीं मिटती मेरे दोस्त। वह आप तो जानते ही हैं, मैं बिल्कुल बहाव में बहती हुई जाऊंगी, नॉनस्टॉप बोलती हुई जाऊंगी, बीच में अब गाने आ जाने चाहिए 90s वाले, लेट्स गो।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
1: आई लव यू रसना,
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: जहां पर हीरो हीरोइन के एक्सेसरीज भी एक्टिंग करने लगे तो समझ जाओ आप 90s की मूवी देख रहे हो, क्योंकि उस टाइम का कैमरा वर्क कुछ ऐसा ही हुआ करता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्सटेप, मैं हूं अंतरा आपके साथ। एंड 90s के बॉलीवुड की भी बीच बीच में बात होनी ही चाहिए, बिकॉज उसके बिना तो बहुत अधूरा है मेरे दोस्त। अच्छा, अब अगर आप याद करें और ध्यान से याद करें और देखें तो सिर्फ एक्टर्स नहीं एक्टिंग करते थे, उनकी चूड़ियां भी फुल परफॉर्मेंस देती थी। हीरोइन ने बस हल्का सा हाथ उठाया, देन छन छन हाय शर्मा गई, छन छन गुस्से में हाथ छटक दिया, छन मतलब डायलॉग बोले ना बोले चूड़िया ऑडियंस को सब कुछ बता देती थी। एंड जैसे 90s की बहुत सी फिल्म्स में जो चूड़ियों की आवाज हमने सुनी हुई है वो सेट पर रिकॉर्ड हुई ओरिजिनल साउंड नहीं होती थी। डबिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान साउंड डिजाइनर्स अलग से बैंगल का साउंड जो है उसको ऐड या एनहांस किया करते थे, ताकि हीरोइन के हर हैंड मूवमेंट में इमोशन और ज्यादा फील हो। इसीलिए स्क्रीन पर छोटा सा जेस्चर भी दिल तक पहुंच जाता था। एंड नोटिस किया है रोमांटिक सीन में चूड़ियों की आवाज बहुत सॉफ्ट एंड मीठी मीठी सी आती थी, शादी के सीन में थोड़ी ज्यादा फेस्टिव आती थी, इमोशनल सीन में बस एक दो हल्की सी खनक आती थी और पूरा मूड चेंज हो जाता था। 90s के फिल्म मेकर्स को पता था दैट कभी कभी बैकग्राउंड म्यूजिक से पहले एक छोटी सी साउंड भी कहानी सुना देती है। आज के सिनेमा में रियलिज्म जो है वो ज्यादा है, तब फीलिंग्स को थोड़ा और ब्यूटीफुल यू नो बना दिया जाता था। एंड ऑनेस्टली 90s की हीरोइन जब खिड़की के पास खड़ी होकर धीरे से पर्दा हटाती थी और डायरी बंद करती थी या बालों को कान के पीछे करती थी, उस सीन का आधा मैजिक उन चूड़ियों की खनक में छुपा हुआ होता था। हाय 90s के रोमांटिक सीन्स आज भी इतने कितने कमाल के लगते हैं, मतलब वी फील देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, क्योंकि उस जमाने में ज्वेलरी सिर्फ कॉस्ट्यूम्स नहीं थी, स्क्रीन प्ले का हिस्सा थी। और आज भी कोई भी यू नो बॉलीवुड फिल्म में वो मीठी सी छन छन सुनाई दे जाए तो दिल तुरंत बोलता है कि प्यार होने वाला है, या फिर यू नो हीरोइन इज थिंकिंग समथिंग। वी ऑलवेज यूज टू गेस लाइक दैट, इट जस्ट एनहांस द होल फीलिंग सो मच। लव 90s, लव द फीलिंग्स ऑफ 90s। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, इफ यू आर लविंग द शो देन स्टे ट्यून्ड, जाने की कोई जरूरत ही नहीं है कहीं पे, आ जाओ आ जाओ।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ। एंड चलिए बात को मस्ती 90s मिक्स टेप पे आगे बढ़ाते हैं और नटराज की पेंसिल के बारे में बात करते हैं। व्हाई स्पेसिफिकली दिस पेंसिल? बिकॉज आई थिंक इसका स्पेसिफिक डिमीनर जो है हमारे यादों के गलियारों में टैटू हो रखा है। That is right. भाई 90s में हमें पता ही है कुछ ब्रांड्स ऐसे थे जिनके लिए कभी एड देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी स्कूल के क्लासरूम में ही डिसाइड हो जाया करती थी। और उनमें से सबसे आइकॉनिक नाम था नटराज की पेंसिल। वो ब्लैक और रेड कलर का डिजाइन, ऊपर गोल्डन कलर की राइटिंग और नई पेंसिल की वो फ्रेश लकड़ी वाली खुशबू। हाथ में आते ऐसा लगता था अब हैंड राइटिंग देखना मेरी कितनी कमाल की आएगी। एंड सच बताइए कितनी बार ऐसा हुआ है कि पेंसिल वही थी, होमवर्क भी वही था, लेकिन नई नटराज मिलते ही कॉन्फिडेंस डबल हो गया। स्कूल में पेंसिल भी पर्सनालिटी का एक हिस्सा हुआ करता था। किसी के पास शार्पन नटराज, किसी के पास छोटी सी लास्ट एज वाली नटराज, कोई उसके ऊपर नाम लिखता था, कोई फेवरेट स्टिकर चिपका देता था। और अगर किसी दोस्त ने पूछा कि एक पेंसिल देना, तो पहले देखते थे वापस करेगा भी या नहीं। और जब टीचर्स कहते थे कि पेंसिल निकालो, तो पूरी क्लास एक साथ वुडन पेंसिल्स डेस्क पे वो टकराने की एक आवाज आती थी। डू यू रिमेंबर दैट साउंड? 90s में स्टेशनरी सिर्फ स्टेशनरी नहीं होता था। एंड दैट इज व्हाई टिल डेट व्हेन आई गो टू अ स्टेशनरी शॉप आई बिकम अ किड। लाइक मैं घंटों स्टेशनरी शॉप में बिता सकती हूँ, मुझे इतना मजा आता है। क्या कमाल कमाल की चीजें अभी भी, मतलब अब तो बहुत ही एडवांस स्टेज में चले गए हैं, इतनी सही चीजें मिल जाती है ना कभी कभी। आई थिंक इमोशंस हमारे जुड़े हुए उससे। सो नटराज पेंसिल, अप्सरा की इरेजर, कैमलिन का वो ज्योमेट्री बॉक्स, चलपाक की वो इंक पॉट, राइट? सब के अपने अपने फैन क्लब्स थे। आज स्टेशनरी की चॉइसेस 32,000 हैं। मैकेनिकल पेंसिल्स है, जेल पेंसिल्स है, डिजिटल स्टाइलस है, राइट? लेकिन उस सिंपल सी नटराज पेंसिल का जो कॉन्फिडेंस था, उसका रिप्लेसमेंट आज तक तो नहीं आया। इसीलिए 90s के बचपन में ब्रांड्स फेमस इसलिए नहीं बनते थे क्योंकि उनके एड्स अच्छे थे। वो फेमस इसलिए बनते थे क्योंकि हर स्कूल बैग में उनकी जगह और हमारी मेमोरीज में उनकी जो जगह है वो ऐसी पक्की हो रखी है कि आज भी उससे एक अटूट सा रिश्ता लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं कुछ करने वाली थी एंड मुझे पेन नहीं मिल रहा था, तो नटराज पेंसिल जो है उसको उठाते ही एकदम मुझे अरे कितने दिनों बाद मैंने देखा, मेरे पास ये पेंसिल भी थी। ओके, एंड देन आई स्टार्टेड, ऑफ कोर्स आई रोट व्हाट आई वाज राइटिंग, बट इट हैपेंस, राइट? इट्स जस्ट लाइक अ मेमोरी, जस्ट अ पेंसिल, बट इट्स अ मेमोरी। व्हाट टू डू? दैट्स 90s फॉर यू। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड।

0: पैसों से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: लास्ट एपिसोड में आई रिमेम्बर आई वॉज टॉकिंग अबाउट द किसमी बार एंड कैसे उसका रैपर कभी सीधा खुलता ही नहीं था बिकॉज उसका प्लास्टिक रैपर वो ऐसे ही बनाया गया था। आई कैन टेल यू वन मोर थिंग अबाउट अनदर यू नो चॉकलेट और टॉफी। कम 90s की यादें ताज़ा करते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो, मैं हूँ अंतरा आपके साथ। भाई एक्लेयर्स करके एक हमारी टॉफी आया करती थी 90s में, इफ यू रिमेंबर 90s के। वैसे भी ये कुछ टॉफी सिर्फ टेस्ट के लिए आज भी हमें इतना ज़्यादा शायद याद नहीं करते, बट उनके साथ होने वाली स्ट्रगल के लिए उनको ज़रूर याद किया करते हैं। नाउ एक्लेयर्स, ओके, टॉफी मुंह में जाने से पहले ही एक चैलेंज कंप्लीट करना पड़ता था कि उसका रैपर उससे अलग करो, लेकिन रैपर का मूड तो कुछ और ही होता था। उसे लगता था मैं तो इस टॉफी को छोड़ने ही नहीं वाला। आप धीरे धीरे उसको रैपर को खोलने की कोशिश करो, रैपर के साथ चिपका हुआ है ना आपको टॉफी, मेल्टेड टॉफी बेसिकली मिलता था, तो उसको हटाना थोड़ा पुल करना पड़ता था, टॉफी का थोड़ा सा हिस्सा भी रैपर के साथ आ गया तो फिर हम क्या करते थे या तो यू नो नेल से हल्का हल्का निकाल कर वो स्क्रेप कर लेते थे, धीरे धीरे निकालते थे, या फिर जो कैरमल रैपर पे चिपक जाता था उससे भी वैसे वेस्ट नहीं करते थे हम लोग उसी को चाट लिया करते थे। एकदम क्लीन हो जाना चाहिए है ना, किसी को जल्दी एक्चुअली होती नहीं थी, हम पेशेंटली रैपर को हटाते थे क्योंकि पता था कि अंदर जो टेस्ट है उसके लिए थोड़ा एफर्ट तो बिल्कुल बनता है। 90s में वैसे भी बहुत सी चीजें इंस्टेंट नहीं मिलती थी, कैसेट रिवाइंड होती थी, टीवी प्रोग्राम का वेट होता था, फोटो डेवलप होते थे और एक्लेयर्स भी आराम से खुला करती थी, शायद इसीलिए उनका मजा भी अलग था। आज पैकेट्स इजी से टियर थिन है, राइट, ज़िपलॉक है एंड एवरीथिंग ओपन्स इंस्टेंटली। तब एक छोटी सी टॉफी भी पेशेंस टेस्ट कर लिया करती थी जनाब। एक्लेयर्स सिर्फ एक कैंडी नहीं थी, वो हमें बिना लेक्चर दिए एक बात सिखा जाती थी कि अच्छी चीजें कभी कभी थोड़ा सा वक्त लेती है।

एक्लेयर्स नहीं, मीठा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है. यस, कंटिन्यू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्सटेप.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh me
3: raho. Healthy khao, protein khao.
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
5: जीजी
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
5: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
2: कौन सा हेड, किसका हेड, किस हेड की बात कर रहे हैं? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल मस्ती 90s मिक्स टेप की यहाँ पर बातें चल रही है, 90s की बातें चल रही है। 90s वाली अंतरा जो है वो आपके यहाँ पे साथ है। भाई 90s के बच्चों ने कई सारी वार्निंग्स पढ़ी हुई है, लेकिन उनमें से एक वार्निंग ऐसी थी जिसका मतलब शायद किसी को भी बचपन में समझ में नहीं आया। सी ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट जो है, कभी भी आप उठाओ उसके नीचे या कहीं पर भी लिखा एक जगह जरूर होता था, डू नॉट टच द हेड। सबसे पहला सवाल, हेड कहाँ है, हमें कहाँ से समझ में आएगा उस टाइप पे। ठीक है, सी कैसेट के दो रील्स दिख रहे हैं, टेप दिख रही है, प्लास्टिक बॉडी भी दिख रही है, लेकिन ये हेड नाम की चीज कहाँ है? फिर भी वार्निंग को हम पढ़ते थे और बिना समझे सीरियस फेस बना लेते थे। एक वो चीज है ना, एक शौक हमारा जो एडल्टिंग का रहता है, जैसे हम हमेशा ही बोलते हैं 90s में। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है और वो ये है कि पता नहीं whether you know it or not, so कैसेट प्लेयर का जो हेड है वो उसका हेड अंदर प्लेयर के अंदर होता था। जब कैसेट प्ले होती थी तो उसकी मैग्नेटिक टेप प्लेयर रिकॉर्डिंग, प्लेयर के रिकॉर्डिंग या प्लेबैक हेड के सामने से गुजरती थी। सो अगर टेप को उंगली से टच कर दिया तो उस पर ऑयल या डस्ट या फिंगरप्रिंट्स आ सकते थे, जिससे साउंड क्वालिटी खराब हो सकती थी। इसीलिए वार्निंग एक्चुअली टेप को अननेसेसरली टच ना करने के लिए होती थी। लेकिन बचपन में हमें लगता था शायद कैसेट के अंदर कोई सीक्रेट हेड छुपा हुआ है। वार्निंग पढ़ने के बाद भी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती थी कि कैसेट को उल्टा पुल्टा करके कभी कभी देखते थे, रील्स को घुमाते थे, पेंसिल से रिवाइंड करना, इट्स सच अ 90s थिंग टू डू। सब कुछ अलाउड था, बस हेड को टच करना नहीं अलाउड था, जो हमें मिलता ही नहीं था। 90s की टेक्नोलॉजी भी कितनी इंटरेस्टिंग थी ना। इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में, समझ आधी हमें, कॉन्फिडेंस फुल ऑन, और इसीलिए उस जमाने के गैजेट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप भी काफी अलग सा था। हम उन्हें सिर्फ यूज नहीं करते थे, उन्हें ऑब्जर्व भी बहुत किया करते थे। आज भी कोई पुरानी ऑडियो कैसेट हाथ में आ जाए तो अगर आपके कभी हाथ में लगे तो या यू कैन एक्चुअली रीड दैट। इनफैक्ट वीडियो कैसेट्स में भी होता था, डू नॉट टच द हेड। अच्छा, आर यू श्योर?

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: Wah,
0: Mercy,
1: kya tevar hai Sunil ke aane ka?

क्या कुछ नहीं किया हुआ है हमने 90s में. मतलब हमारी इतनी फीलिंग बेस्ड लाइफ थी ना 90s में कि आई थिंक दैट्स व्हाई दिस फीलिंग्स आर सो स्ट्रॉन्ग. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s में, एक स्टेप आप सुन रहे हो, मैं हूं अंतरा आपके साथ. सो टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, इट फेल्ट मैजिकल राइट. एंड 90s के बच्चे साइंस एक्सपेरिमेंट सिर्फ स्कूल लैब में नहीं, ड्रॉइंग रूम में बैठ के किया करते थे. उसका सबसे वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट विच आई कैन रिमेम्बर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज टीवी बंद होने के बाद स्क्रीन पे हाथ रखना. याद आया, प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है, घर वालों ने टीवी ऑफ कर दिया, हम सीधा स्क्रीन के जो है पास पहुंच जाते थे, एक हाथ धीरे से स्क्रीन पे, और फिर वो हल्की सी वाली स्टैटिक सी जो फीलिंग, बस उस मोमेंट पे लगता था टीवी के अंदर सच में कोई मैजिक है. So, वो पुराने सीआरटी टेलीविजन यानी कि कैथोड रे ट्यूब वाले जो टेलीविजन स्क्रीन के अंदर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स यूज करके पिक्चर बनाते थे पहले के टाइम पे, 90s की मैं बात कर रही हूँ. इस प्रोसेस की वजह से स्क्रीन के सरफेस पर थोड़ी सी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट हो जाया करती थी. इसीलिए टीवी बंद होने के तुरंत बाद जब हम स्क्रीन को टच करते थे तो वो हल्की सी एक इलेक्ट्रिक फजी फीलिंग जो है वो महसूस होती थी. मतलब वो कोई इल्यूजन नहीं था, साइंस था. एंड हम सबने ये किया हुआ है कभी ना कभी, लेकिन किसी ने कभी ये रीजन नहीं पूछा, बस टच करके स्माइल करते थे कि तूने वो देखा है, टच करके एकदम झन सी एकदम फीलिंग आती है. ऐसा हम दोस्तों के साथ फिर डिस्कस भी करते थे, एंड फिर हमारे दोस्त या फिर हम घर आके उसको ट्राई किया करते थे कि हमारे टीवी पे भी ऐसा होता है. कभी स्क्रीन पे बाल चिपका कर देखते थे, कभी उंगली घुमा कर देखते थे. 90s में टेक्नोलॉजी मिस्टीरियस जरूर लगती थी कि टीवी कैसे चल रहा है, कैसेट कैसे गा रही है, रिमोट सिग्नल कैसे दे रहा है, सब कुछ थोड़ा सा नहीं काफी सा मैजिकल लगता था. आज तो भाई टच स्क्रीन्स है, OLED डिस्प्लेज है, स्मार्ट टीवीज है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उनमें वो स्टैटिक वाला सरप्राइज नहीं है, वो क्यूरियोसिटी नहीं है, है ना. 90s के गैजेट्स मशीन कम, मैजिक बॉक्सेस इसीलिए ज्यादा लगा करते थे, और इसीलिए इस शो की हर बात भी एक जादू से कम नहीं लगती है. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चलिए जादू ही गाने कुछ 90s वाले, हो जाए

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: डूडी, ये जैकेट कंधे पे रखने का स्वैग तो भाई आज भी बहुत ही शानदार लगता है मुझे। इट गिव्स यू सच अ कूल वाइब, आई टेल यू, बट इट्स सच अ 90s थिंग टू डू एज वेल। रेडियो मस्ती 947 लाइव पर अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई स्टाइल ऑलवेज बिफोर कम्फर्ट, ये एटलीस्ट 90s के बॉलीवुड में लगता तो था ही, राइट? भाई 90s के बॉलीवुड हीरोज के पास ये एक ऐसी फैशन जो है, एक हैक ट्रिक जो भी कह लो, जो रियल लाइफ में शायद किसी को इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल ना लगे, लेकिन स्क्रीन पे क्या स्टाइल लगता था यार। सी, हीरो चल रहा है और उसका जैकेट पहना हुआ नहीं है, बस एक कंधे पे लटका हुआ है। वो स्लो मोशन वॉक, वो बैकग्राउंड में म्यूजिक, हीरो की आंखों में कॉन्फिडेंस, जैकेट बस एक शोल्डर पे बैलेंस करके चल रही है। ऐसा लगता था ग्रेविटी भी हीरो की फैन है। सो 90s के कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट ना कई बार जानबूझकर जैकेट को सिर्फ एक कंधे पर ड्रेप किया करते थे। रीजन बीइंग, जब एक्टर चलता था तो जैकेट नेचुरली मूव करती थी। इस मूवमेंट से वॉकिंग शॉट और भी डायनामिक लगता था। स्क्रीन पर पर्सनालिटी और एटीट्यूड इंस्टेंटली हाईलाइट हो जाते थे। मतलब स्टाइल सिर्फ कपड़ों में नहीं था, कपड़े कैसे कैरी किया जाते हैं उसमें था। एंड द फनी पार्ट इज, हम सब ने ये कभी ना कभी ट्राई किया हुआ, मैं तो आज भी करती हूँ। आई जस्ट लव दैट स्टाइल, आई फाइंड इट रियली रियली कूल। स्कूल से आते वक्त है ना, या कॉलोनी में वॉक करते वक्त जैकेट या स्वेटर कंधे पे डाल लिया, दो मिनट बाद ढप वो नीचे गिर जाता था, क्योंकि असली हीरो और हम में डिफरेंस तो था ही ना। 90s का फैशन वैसे भी कॉन्फिडेंस पे ज्यादा चलता था। डेनिम जैकेट्स, लेदर जैकेट्स, प्रिंटेड शर्ट्स, उन्हें कैरी करने का अपना ही एक अंदाज, कंफर्ट बाद में लेकिन एंट्री पहले, वो भी हीरो माफिक। आजकल फैशन ट्रेंड्स हर हफ्ते क्या, मतलब हर दिन मुझे बदलते हुए नजर आते हैं। तब एक हीरो का स्टाइल, एक हीरोइन का स्टाइल पूरे साल कॉपी होता था। एक कंधे पे लटकी हुई जैकेट भी फैशन स्टेटमेंट बन जाती थी। I mean, it was just not the dialogues or the script or anything. उनकी चाल भी फैशन का हिस्सा थी यार। I mean, we are talking about 90s. Come on, ये तो बिल्कुल फील देने वाला 90s है। You see, nowadays polka dot is so much in fashion again, but it is not आज का thing, right? Polka dots have been there for a good long time. Very, very. Polka dot वाली dresses याद है आपको 90s में कितनी heroines ने पहनी हुई है? I mean, not only dresses, dresses से मैच करते हुए उनके हेडबैंड्स भी, इफ यू रिमेम्बर, आया ना याद? उनके एकदम करिश्मा कपूर, रवीना टंडन के एकदम बड़े बड़े एकदम ऐसे पुफ वाले बाल और उसमें लगे हुए पोलका डॉट वाले स्कार्फ। आई नो यू नो, है ना, गाने सुनते हैं, चलो।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: आई लव यू रसना।
2: रसना से तो जुड़ी इतनी प्यारी याद है ना मेरी कि मैं क्या ही बताऊँ। रेडियो 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। नाउ रसना वन ऑफ माई फेवरेट, ऑरेंज रसना तो मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट थी। हर बर्थडे पर जो है ये एक चीज, कुछ हो ना हो लेकिन रसना जरूर बनाया जाता था बिकॉज इट यूज टू बी माई फेवरेट। एंड मी एंड माई डैड वी यूज टू मेक दिस रसना टुगेदर, बड़े से एक स्टील की डेगची में जो है हम लोग इसको बनाया करते थे और फिर बॉटल में भर भर के उसको रखा करते थे। आई नो हमें वैसे भी 90s के बच्चों को ना इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का थोड़ा कम शौक था, नहीं लगता नहीं है, ये काफी यूनिक क्वालिटी थी, एक्सपेरिमेंट करने का शौक काफी था। और इसका एग्जांपल भी रसना ये बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। सी किचन में अगर जैसे मम्मी रसना बना रही है तो पहला सवाल, टेस्ट कर सकते हैं लेकिन ग्लास का नहीं चाहिए, सीधा पाउडर का। Yes, that is right. स्पून से थोड़ा सा पाउडर निकाला, उंगली पे रखा और सीधा उसको चख लिया। अगला एक्सप्रेशन, पहले तो वाह, फिर होता है कितना खट्टा है, और फिर भी दो मिनट बाद एक बार और हो जाए जैसे पहली बार कुछ अलग ही रिजल्ट आने वाला हो। नाउ पैकेट पे क्लियरली लिखा होता था कि पानी में इसको मिलाओ, शुगर डालो, मिक्स करो, तब ड्रिंक बनती थी, लेकिन हम मैनुअल बाद में पढ़ेंगे, क्यूरियोसिटी जो है पहले। और जब मम्मी देख लेती थी तो डायलॉग आता था कि इसको ऐसे नहीं खाना है, है ना, गला खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा खट्टा है, ऑल दोस थिंग्स। लेकिन बचपन की क्यूरियोसिटी को लेक्चर कब रोक पाया है, फिर भी वो बड़ा सा जग आएगा, फिर वो एक स्पून से उसको ऐसे गोल गोल घुमाना और फ्रिज में ठंडा होने का वेट, वो वेट भी कितना मुश्किल हुआ करता था ना। समर का मतलब ही था यार, रसना, रूह अफ़ज़ा, नींबू पानी, पूरा घर एक साथ बैठकर ठंडा ठंडा उस ड्रिंक को पीना। इतने सारे आजकल जो है इंस्टेंट जूस के ऑप्शंस एंड ये सारी चीजें हैं, तब ड्रिंक बनाना भी फैमिली एक्टिविटी होती थी और उस एक्टिविटी का अनऑफिशियल फर्स्ट स्टेप पाउडर टेस्ट टेस्ट। ऐसी ही यादें बिल्कुल ताजा करती हुई मैं, लेकिन थोड़ी देर और यहाँ पे रहती हुई मैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
4: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
5: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
6: टाइम टू रेज द बार,
7: रम्मा।
6: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
5: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: हाँ जी, हाँ जी, बस इसी बात के साथ साथ अब जाने की बारी है। आई नो वी नेवर नेवर लाइक दिस मोमेंट बिकॉज वी डोंट वांट टू कम आउट 90s की दुनिया से। रेडियो मस्ती भाई वो समय लाइव ऑन ट्रैप के साथ और यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। सो वेल, कितना खूबसूरत सफर, एक बार पीछे मुड़ के रिकैप हो जाए एकदम 90s स्टाइल में। 90s में भी तो रिकैप होता था ना। सो भाई, आज कितनी सारी चीजें थी कि वो आवाजों के बारे में हमने बात की जो सिर्फ 90s को बिलोंग करती थी, वो छोटी सी पेंसिल जिसके पेन का कैप लगाकर हम उसकी लाइफ बढ़ा दिया करते थे, वो साइकिल की चेन जो बीच रास्ते पे उतर जाती थी, वो ग्रीस लगे हुए हमारे हाथ जो हम प्राउडली दिखाते थे, वो फाउंटेन पेन की ब्लू इंक और जो उंगलियों पे लगा कर जो है बता देती थी कि आज स्कूल में बहुत सारी लिखाई हुई है, वो बॉलीवुड की हीरोइंस जिनकी चूड़ियों की खनक एक्टिंग करती थी, वो नटराज की पेंसिल जिसके हाथ में पकड़ते ही लगता था कि आज हैंड राइटिंग जरूर अच्छी होगी, वो एक्लेयर्स जिसका रैपर ही पहला चैलेंज होता था, वो ऑडियो कैसेट जिस पर लिखा होता था डू नॉट टच हेड, वो सीआरटी की टीवी स्क्रीन जिसे टच करके लगता था टेक्नोलॉजी में सच में जादू बसा है और वो जैकेट का हीरो का एकदम एक कंधे पे लटका कर स्टाइल मारना, एंड वो रसना जिसका पाउडर ड्रिंक बनने से पहले ही आधा टेस्ट हो जाता था। एक कंक्लूजन अगर आज के एपिसोड का निकालना हो तो वो शायद ये होगा कि 90s में परफेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं था, पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट था। हम हर चीज़ में इन्वॉल्व होते थे, बुक कवर करने में, रसना बनाने में, साइकिल ठीक करने में, कसेट संभालने में, टीवी देखने में और बॉलीवुड के हीरोज़ को कॉपी करने में, हीरोइंस को इन केस ऑफ गर्ल्स। आज बहुत सी चीज़ें आसान हो गई है लेकिन शायद इसी आसानी में वो छोटी छोटी कहानियाँ कहीं पीछे रह गई हैं। 90s ने हमें एक बहुत ही प्यारी बात सिखाई, दैट खुशियाँ रेडीमेड नहीं मिलती, उन्हें मिलकर बनाया जाता है। इसीलिए जब भी कोई पुराना गाना 90s का बजता है, कोई कैसेट दिखती है या रसना का पैकेट नज़र आ जाता है, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को नहीं देखते, हम अपना बचपन उसमें देख कर जी भी लेते हैं। मैं हूँ अंतरा यहाँ पर आपके साथ, एंड आज के लिए आपसे लेती हूँ इजाजत, अगली बार वापस मिलेंगे और बातें करेंगे और यादों के इस गलियारों को फिर एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ खोलेंगे। तब तक के लिए यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड, बाय बाय एंड टेक केयर।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो, हाय, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत स्वागत स्वागत, आपका ढेर सारा स्वागत कर रहा हूँ मैं समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। कैसे हैं सिंगापुर? और अगर मैं अपने स्टाइल में पूछूं तो केम छे सिंगापुर, सारू छे अग्गा सिंगापुर, मारू छे। और आज के इस शो में, जिसका नाम है लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज में, मैं आपको किससे मुखातिब करवाने वाला हूँ उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, यही बताने तो आया हूँ मैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलूंगा एक पुराने हिंदुस्तान में, 1850 के आसपास के हिंदुस्तान में। ये तब का हिंदुस्तान है जब सिपॉय म्यूटनी यानी गदर 1857 की क्रांति होने ही वाली थी। पूरे इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें थी, करप्शन था, रीजनलिज्म था, कास्टिज्म बहुत ज्यादा सर उठाए हुए था और कुप्रथाएं बहुत जोरों पर थी, ऊपर से ब्रिटिश हुकूमत। ऐसे में न व्यापार ठीक था न ही आम जिंदगी, देश को आजादी चाहिए थी। इन सबको भारत के सबसे पहले हिंदी नाटक को लिखने वाले लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़ा खूबसूरती से अपनी नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा में दर्शाया। और कुछ ऐसा ही हाल था, न राजा था जिसकी चलती हो, न कोई सुल्तान, और जो बचे थे उनके राज में जाने क्या हो रहा था। अंधेर नगरी थी और चौपट था राजा। भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी में एक बड़ा खूबसूरत अंश है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप समझ सकेंगे कि उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा था। नाटक में सब कुछ टके शेर मिलता था, चाहे कुछ भी खरीदिए। टके शेर मतलब एक टका दीजिए और एक शेर कुछ भी ले लीजिए, मतलब नमक भी उसी भाव और बादाम भी उसी भाव। ये सुनिए क्या लिखा उसमें कि चूरन अमल बैद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, चूरन बना मसालेदार, हिंदू चूरन इसका नाम, चूरन जब से हिंद में आया, चूरन नाटक वाले खाते, चूरन सभी महाजन खाते, चूरन खाते लाला लोग, चूरन खावे एडिटर जात, चूरन साहिब लोग जो खाता, चूरन पुलिस वाले खाते, ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर। उस जमाने में साहब कबाब टके सेर, मछली टके सेर, बादाम पिस्ते अखरोट टके सेर, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल सब कुछ टके सेर मिलता था। मगर 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की सिपाही म्यूटनी के बाद, भारत के लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, एक दिशा मिली। न सिर्फ आजादी की लड़ाई को लड़ने का जज्बा आया, बल्कि व्यापार करने का, कमाने का, जीने का भी बहुत हौसला आया। बहुत सारे व्यापारी बॉम्बे कोलकाता की ओर रुख करने लगे। राजाओं और मुगल बादशाहों का राज खत्म होने लगा। आज हम एक ऐसे संघर्ष की बात करेंगे जो न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत से थी, बल्कि व्यापार में खुद

0: 3, 2, 1.
1: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
6: जी वेलकम बैक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन गानों से आपने बहुत सारी एनर्जी गेन कर ली होगी और अब आप आ गए होंगे इस स्ट्रगल के सफर पर चलने के लिए। मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज। और आज हम जिनके बारे में बात करें, उन शख्स से आपको मिलवा दूं, वो हैं जिन्हें कॉटन किंग ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनकी शख्सियत बेहद ही सादा रही, उतनी ही सादा जितनी कपास होती है। कॉटन, चाहे जितना भी रेशम हो आसपास, कपास सबसे अच्छा लगता है। एक बहुत बड़े व्यापारी होने के बाद भी, बहुत रिच होने के बाद भी, उन्हें शफाफ कुर्ता, धोती और मारवाड़ी पगड़ी में ही हमेशा देखा गया। यहां तक कि विदेशों में भी वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ ऐसे ही रहे इसी लिबास में। एक बार फिर से मिलवा रहा हूं एक और मारवाड़ी बिजनेसमैन से, जिनका नाम है गोविंदराम सेकसरिया। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने के सबसे बड़े व्यवसायी थे गोविंदराम सेकसरिया। मैंने पहले भी भारत की आजादी से पहले व्यवसाय के बारे में आपको बताया भी था कि उस समय ज्यादातर अफीम और कॉटन के व्यवसाय में लोग लगे हुए थे। पारसी लोग इस व्यापार में पूरी तरह हाथ आजमा रहे थे और जम भी रहे थे। जमशेदजी टाटा से पहले कावस जी नाना भाई डावर ने सूती धागा बनाने के लिए सबसे पहले मशीनरी खरीदी और धागे कपड़े का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। कुछ मारवाड़ी यानी राजस्थानी भी इसमें अपना भाग्य परखने को निकल पड़े थे। मसलन जमनालाल बजाज जी के फादर बचराज जी, वो भी कॉटन के व्यवसायी थे। लेकिन इन सब में जो सबसे ऊपर पहुंचे वो थे गोविंदराम सेकसरिया। तो चलिए एक ब्रेक।

ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, है जट यमला पगला दीवाना।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आज हम और आप बात कर रहे हैं लेजेंड्स की इस सीरीज में, अचीवर्स सीरीज में, कॉटन किंग ऑफ द वर्ल्ड गोविंद राम सिकसरिया साहब की। गोविंद राम जी का जन्म हुआ राजस्थान के नवलगढ़ में। ये साल था 1888। 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। पहले बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी, तो 15 साल की जब उम्र में उनकी शादी कर दी गई तो वो अपना घर यानी नवलगढ़ छोड़कर अपने पिताजी के साथ बॉम्बे चले आए। उनके फादर कॉटन के व्यवसायी थे, वो वहीं उनके बिजनेस में उनका साथ देने लगे। लेकिन लेकिन लेकिन ये राह इतनी आसान कहां थी। इस बहुत जवान बच्चे के पिताजी बहुत जल्द गुजर गए और उसे मझधार में अकेला छोड़ गए। जिंदगी पर मुसीबतों ने हमला कर दिया। घर में मां, पत्नी और 6 छोटे भाई बहन थे। कुछ दिन बाद मां भी गुजर गई। न तो माता पिता का साया रहा सिर पर और न ही ब्रिटिश सरकार का साथ मिलने की उम्मीद थी, पर समय ने उनका साथ दिया। उस 17-18 साल के लड़के ने बिना हिम्मत खोए काम करना शुरू किया। बिजनेस के लिए माहौल इतना खराब था कि उन्होंने अपना करियर बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज में ऑपरेटर के तौर पर शुरू किया। लोगों से अपनी जान पहचान बढ़ाई और 1905 में अपनी फर्म बना ली। कॉटन कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड में, जो ब्रिटिश सरकार ने बना रखी थी, मेंबरशिप हासिल कर ली। ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन के भी वो मेंबर बन गए, जिसमें कॉटन के बायर्स, सेलर्स और ब्रोकर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स वगैरह शामिल थे। वेल, उनकी फर्म का नाम था मेसर्स गोविंद राम सिकसरिया। मैंने आपको कहा था ना, समय का खेल बड़ा ही निराला है। उनकी फर्म पांव जमा ही रही थी कि तभी हुआ रशिया और जापान के बीच वॉर। इस वॉर में उन्होंने देखा कि कैसे अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाए तो गवर्नमेंट का सब मैनेजमेंट बिगड़ जाता है और इसका फायदा उठाया जा सकता है। और इसी बीच शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इस मौके को उन्होंने खूब भुनाया और खूब कमाया, जमकर ट्रेडिंग की कॉटन की। और जिन दो संस्थाओं के नाम अभी मैंने लिए, उनके वो ओरिजिनल मेंबर बन गए और बस सफलता के पथ पर निकल पड़े।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: They were not chosen. They were created.
4: उसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलावेंगे।
5: Alpha.
3: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
6: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
3: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
5: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है।
3: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गोविंद राम सिकसरिया की कहानी आज सुन रहे हैं आप लेजेंड्स में समर की जुबानी। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। अचीवर्स सीरीज में आज हम गोविंद राम सिकसरिया साहब की बात कर रहे हैं। नाम कुछ अनजाना सा लगा होगा आपको, लेकिन उनका नाम आज भी किसी ट्रेडर्स कम्युनिटी के बीच बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। आज ही तो हम थे वर्ल्ड वॉर पर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पर, जिसके कदम हार कर थक गए थे, लेकिन वहां से कॉटन की ट्रेडिंग का एक बड़ा बाजीगर मिला देश को, और वो थे हमारे आज के लेजेंड। वर्ल्ड वॉर के बाद बाजार पर बड़ा खराब असर हुआ। साल 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद सोने की रेट पूरे वर्ल्ड मार्केट में गिर गई, स्टॉक मार्केट तबाह हो गया। यकीनन सिकसरिया को भी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बहुत शांत, पूरी डिग्निटी के साथ डटे रहे। उन्होंने कॉटन मार्केट को छोड़ा और सोने चांदी में ट्रेडिंग करने लगे। यही नहीं, और भी दूसरे कमोडिटी मार्केट्स भी आजमाए उन्होंने, और जैसा कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। जल्द ही इसमें उन्हें सफलता भी मिल गई। बॉम्बे बुलियन एक्सचेंज के वो मेंबर बन गए, साथ ही मारवाड़ी चेंबर ऑफ कॉमर्स, द बॉम्बे सीड ब्रोकर्स एसोसिएशन एंड द इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर के भी वो मेंबर बन गए। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की जब स्थापना हुई तो वो उसके फाउंडर्स में से एक थे, और फिर जब वो पूरे इंडियन मार्केट में छा गए, उन्हें अब ये मैदान छोटा लगने लगा। उन्हें लगा पूरे विश्व को अपना मैदान बनाना होगा, और उन्होंने देश की सीमा को लांघ लिया, सीधे न्यूयॉर्क पहुंचे और न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज के वो मेंबर बन गए। उन दिनों इंडियंस के लिए ये काफी बड़ी बात होती थी, मगर हौसले उनके बुलंद थे। वो ना सिर्फ वहां पहुंचे बल्कि अपना सिक्का भी जमा लिया। तो यहाँ मुझे भी हौसला बुलंद करके आपको कहना होगा कि एक ब्रेक ले लेते हैं। हालांकि जी तो चाहता है कि आपको एक कहानी कहता चला जाऊं, और सच मानिए तो मेरा खुद का मन तो करता है कि मैं टाइम मशीन से उस दौर में पहुंच जाऊं। फिलहाल तो टाइम मशीन ब्रेक पर ले जा रही है, क्या कीजिए, ब्रेक लीजिए और क्या कीजिए। लीजिए इस ब्रेक को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा म्यूजिकल ब्रेक है। इसके बाद मैं फिर से इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आऊंगा। देखिए, इस अचीवर सीरीज में आप जो इन बड़े बड़े बिजनेसमैन की कहानी सुन रहे हैं, उनके जीवन के उन पहलुओं से रूबरू हो रहे हैं जिनसे आप ये सीख सकते हैं कि

मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: एक बार फिर से ब्रेक के इस पार आपका स्वागत है यार। मतलब बहुत सारे लोग जो मेरी उम्र के हैं वो मेरे यार, और जो मेरे से छोटे हैं उन्हें बहुत सारा प्यार, और जो मुझसे बड़े हैं उनका प्यार मेरे लिए। मुझे दे दीजिएगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के फेसबुक पेज पर आकर। फिलहाल तो लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं गोविंद राम सेकसरिया साहब की। आप कभी इंडिया जाएं तो राजस्थान के शेखावाटी इलाके में जरूर जाएं। सारे मारवाड़ी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे उनमें से कुछ तो मारवाड़ी होंगे जो राजस्थान के होंगे या जो शेखावाटी इलाके से परिचित होंगे, तो उनसे भी मिल सकते हैं आप। ये इंडियन कम्युनिटी जो यहाँ पर इतनी सारी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इनके अंदर भी वो बिजनेस का सेंस बड़ा कमाल का होता है। लेकिन मैं आपसे शेखावाटी इलाके में जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ सारे मारवाड़ी व्यवसायियों की बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। वहाँ उनका आर्किटेक्ट देखकर आप दंग रह जाएंगे। क्या खूबसूरत है पत्थरों का रंग, जालियां, झरोखे, सब कमाल। आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां पर, दावा है मेरा समर का। तो चलिए लेजेंड्स की इस महफिल में हमारे दरमियान हैं आज मारवाड़ी कॉटन बादशाह गोविंद राम सेकसरिया जी। तो उन्हीं की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के नवलगढ़ में आज भी उनकी विशाल पुश्तैनी हवेली खड़ी है, ये बताती हुई कि ही वॉज द कॉटन किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो जी हम कहानी में आते हैं फिर से, और हम पहुंच गए थे अमेरिका। यूरोप, कॉपर, शुगर और गेहूं का बिजनेस अच्छा खासा चल पड़ा सेकसरिया साहब का। इसके साथ ही आप माने या ना माने, उनसे वर्ल्ड के उस वक्त के बड़े बड़े बिजनेस हाउस सलाह मशवरा करने आते थे कि क्या करें क्या नहीं करें, कहां दाम लगाएं, कहां पैसा लगाएं, कैसे व्यवसाय करें। ये उनका शातिर दिमाग था और पर्सनैलिटी बेहद सिंपल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। एक दफा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट साहब, जो उन दिनों न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी कॉटन फर्म के मालिक भी थे, वर्ल्ड टूर पर निकले, बॉम्बे भी आए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सेठ गोविंद राम जी से भी मिल लिया जाए, कुछ सीखने को ही मिलेगा। पहले इन जनाब की कभी मुलाकात हुई नहीं थी, तो साहब पहुंच गए सेठ जी के ऑफिस। किसी को कहलवा भेजा कि सेठ जी से मिलना है। बहुत देर तक वो देखते रहे गद्दी पर एक आदमी बैठा है, कुर्ता धोती पहने, और ढेर सारे लोग उसे घेरे खड़े हैं। साहब को समझ नहीं आया कि ये कौन शख्स है। तब वहीं से किसी ने बताया कि यही तो हैं अपने सेकसरिया जी, गोविंद राम जी। जनाब बहुत चक्के रह गए, इतना बड़ा आदमी, इतनी सादा पोशाक। जी ये होती है बड़े लोगों की बात। तो इसी बात पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और भी बातें होंगी ऐसी ही रोचक और कुछ जानकारी भरी। तो कुल मिलाकर लबलुबाब ये कि सफलता

सकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक। आज हम लेजेंड्स के सफर पर बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े ट्रेडर गोविंद राम सिकसरिया जी की, जो पूरे वर्ल्ड में छा गए थे, खासतौर पर 3 सिग्निफिकेंट एंड बिग कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया एंड अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। लेकिन कुछ टाइम बाद दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस में अपना असर डालने के बाद उन्होंने ट्रेडिंग से इतर इंडस्ट्रीज डालने की सोची। उन्होंने एक नई फर्म बनाई, गोविंद राम ब्रदर्स लिमिटेड। उन्होंने वेजिटेबल ऑयल बनाने की इंडस्ट्री, शुगर बनाने की, टेक्सटाइल्स, मिनरल्स, बैंकिंग, मोशन पिक्चर्स और प्रिंटिंग के क्षेत्र में भी हाथ आजमाए। हैदराबाद में पहली ऑयल मिल शुरू की, जिसमें कॉटन के बीज से ऑयल निकालने का काम शुरू किया गया। ये पहली दफा ही हुआ था जब जिन बीजों को वेस्ट समझा जाता था उनसे ऑयल निकालने का काम शुरू किया। यानी उनके पास आइडियाज थे, और आइडियाज ऐसे वैसे घिसे पिटे नहीं, इनोवेटिव आइडियाज, और जज्बा भी था। और यही नहीं, वो बैंकिंग में भी कूद पड़े, भारतीयों के लिए इंडियन बैंक की उस वक्त जरूरत को देखते हुए, ताकि न सिर्फ उनको काम के लिए पैसा दिया जा सके बल्कि उनकी जमा पूंजी की हिफाजत भी हो सके। और उन्होंने सबसे पहले बैंक बनाया राजस्थान बैंक। बैंक की ब्रांचेस बॉम्बे और सेंट्रल इंडिया में काम करने लगी। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आकाश से पाताल तक उन्होंने हर अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश की। पाताल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने माइनिंग में भी जाने का पूरा प्लान बना लिया था, और कोंकण के सावंतवाड़ी रीजन में माइनिंग का काम किया भी। माइका की माइनिंग की उन्होंने, और ये इलाके खाली पड़े थे, किसी पर इनका ध्यान ही नहीं था। माइका के बहुत बड़े डिपॉजिट्स थे इन जगहों पर। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन जहां न पहुंचे कोई भी आइडिया, वहां पहुंचे सेठ गोविंद राम जी का आइडिया। ये अभी आप सुन लीजिए, ये होता था उस वक्त। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या क्या बताऊँ आपको, किस किस फील्ड की बात करें। पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ चाचा चौधरी का दिमागी कंप्यूटर से तेज चलता है, अब मुझे पूरा यकीन है कि सेठ जी से सब पीछे ही हैं। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: They were not chosen. They were created.
2: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
0: Alpha, the newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई।
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
0: बोर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।
5: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
6: हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल आप हैं मेरे यानी समर के साथ और सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज। आज हमारे साथ एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनके काम इतने बड़े हैं कि क्या बताएं आपको। दरअसल कुछ भी बड़ा करने के लिए आपके अंदर भूख होना जरूरी है, हर शय आपको काम लगे, आपको कहीं भी सेटिस्फेक्शन ना हो। और ये सब था गोविंद राम जी के अंदर। जानकारी के लिए भूख, नॉलेज की भूख जो कभी न मिट सकी, ऐसी भूख जो किसी भी चीज से न मिट सके। हमेशा औरों से ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहना चाहते थे, सबसे आगे रहना चाहते थे वो। नेवर डू योरसेल्फ व्हाट यू कैन गेट अ राइट मैन टू डू, ये उनका गाइडिंग प्रिंसिपल था। वो कहते थे कि जब कोई व्यक्ति उस काम को परफेक्टली कर सकता है तो फिर उसे खुद क्यों किया जाए। जरूरी है कि उस आदमी का इस्तेमाल हो और ठीक से हो। इसके अलावा एक वर्ड में अगर उनको डिस्क्राइब करना हो तो वो है मॉडेस्टी। बहुत ही पोलाइट, एक तरह से मीडिया शाई। बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने, लेकिन किसी भी न्यूज़पेपर से वो दूर रहे। बहुत चैरिटी करते थे, लेकिन कभी पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया। बस कहीं अगर एक कमी थी तो वो थी उनकी एजुकेशन में। वो पढ़े लिखे नहीं थे और जानते थे पढ़ने की वैल्यू क्या है। उन्होंने कई बार अपने आप को असहाय भी महसूस किया। पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से उन्हें बहुत मुश्किलात आन पड़ी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने एजुकेशन में चैरिटी की, जगह जगह स्कूल बनवाए, और सबसे पहला स्कूल जो उन्होंने बनवाया अपने होम टाउन नवलगढ़ में बनवाया, और ये था एक गर्ल्स स्कूल। हाँ जी, वो चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। एक ब्रेक के बाद उनकी और भी कई

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: क्रिशिवल नट्स, ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
3: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक लेजेंड्स की महफिल और माय समर। जिस कहानी के साथ हमें वो है सेठ गोविंद राम सिकसरिया की कहानी। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत ही कमाल की शख्सियत गोविंद राम सिकसरिया। सिकसरिया साहब गांधी जी के अनुयायी भी रहे और बल्कि मैं ये कहूंगा कि गांधी जी ही थे जिनसे वो मोटिवेट हुए इस बात के लिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन की फील्ड में काम करना चाहिए। जितना ज्यादा बच्चों को एलिमिनेट करेंगे, जितना ज्यादा एजुकेट करेंगे, उतना ही ज्यादा देश का भविष्य रोशन होगा। वेल, एक दफा गांधी जी ने बजाज ग्रुप के फाउंडर जमनालाल बजाज जी से कहा कि अगर पैसा दान करना है तो बच्चों के एजुकेशन के लिए करना चाहिए। जमनालाल जी तो गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे। इस बात पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और एजुकेशन फंड बनाया। इस फंड में सारे व्यवसायियों को पैसा डालने को कहा गया। तब जमनालाल जी के एक बड़े अच्छे जानकार श्रीनिवास जी बगरका ने सेठ गोविंद राम जी को ये बात बताई। सेठ जी को जब ये मालूम हुआ कि ऐसा किसी अच्छे कॉज के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है तो उन्होंने इस फंड को पूरा फाइनेंस करने की बात कह डाली। उन्हें लगा कि कहीं गांधी जी को पैसे कम न पड़ जाएं और बापू सोचें कि उनको नहीं पता वो कितना अमाउंट दे रहे हैं या क्या। उन्होंने बहुत सारा अमाउंट उस फंड में डाल दिया, यानी उस फंड को फुल कर दिया, फुल भर दिया। लगभग 4 लाख रुपए डाल दिए। उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट था। फिर बापू ने इस अमाउंट को यूज करते हुए नागपुर, वर्धा, जबलपुर और खामगांव में कॉलेजेस बनवाए और सबके सब गोविंद राम जी के नाम पर ही बने। लेकिन न सिर्फ एजुकेशन बल्कि उन्होंने दूसरे सोशल कॉजेस के लिए भी बहुत पैसा दिया। बॉम्बे हॉस्पिटल में भी वक्त वक्त पर उन्होंने खूब दान दिया। उस वक्त के सबसे बड़े डोनर थे वो। इसके अलावा शायद आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने उसमें भी पैसा लगाया।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: Are you ready?
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस्तकबाल में। आपको सुना रहा हूँ आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने विश्व भर में कॉटन किंग की उपाधि पाई, खूब कमाया, खूब दान किया। उनकी लाइफ का मोटो भी यही था, अर्न एंड गिव। इसी मोटिव के साथ पूरा जीवन जिया। अच्छा हाँ, मैं आपको एक और बात बता रहा था कि वो किस और काम से एसोसिएटेड रहे। ये था बॉम्बे टॉकीज। जी हाँ, बॉम्बे टॉकीज में वो फिल्म बनाने के लिए हिमांशु राय और देविका रानी को फाइनेंस किया करते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीयों की नस पकड़ ही ली थी। उस वक्त फिल्म्स देशवासियों को जोड़ने का काम कर रही थी और फिल्में एकमात्र मनोरंजन का साधन हुआ करती थी और गुलाम भारत के लोगों में आजादी की भावनाएं जगाने का काम कर रही थी। जरूरत भी थी कि उनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि तब तक लोग बहुत ज्यादा फिल्म्स देखा नहीं करते थे। जैसे नौटंकी हुआ करती थी, कमोबेश उसी तरह से फिल्म्स को लिया करते थे। फिल्म्स देखने जाना यानी बहुत छोटा काम माना जाता था और इवन प्रोफेशन में भी रेपुटेशन नहीं था। कलाकार कुछ फिल्म बनाने की सोचे तो भी पैसा था ही नहीं इतना। बॉम्बे टॉकीज फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भारत की पहली पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी और इससे भी सेठ जी जुड़ गए, इनडायरेक्टली ही सही। बॉम्बे टॉकीज बनाने से पहले भी फाइनेंसेस की जरूरत थी। उन दिनों एक बहुत बड़े व्यवसायी थे सेठ बद्री प्रसाद दुबे, लेकिन उन्होंने बॉम्बे टॉकीज को फाइनेंस करने से मना कर दिया क्योंकि वो पहले टॉकी आलमारा में पैसे लगा चुके थे और उनको कोई फायदा नहीं हुआ था। मगर उनके बेटे राजनारायण दुबे को मनाया गया, वो मान गए, यंग थे, वो फाइनेंस करने को तैयार हो गए। इसके अलावा एक और फाइनेंसर बने थे, वो थे हमारे आज के लेजेंड गोविंद राम सेकसरिया साहब। पर जब भी इंडिया की बात आती है उस दौर के तो सारे एंगल्स जानने पड़ते हैं। तो चलिए फिलहाल
7: मैं तुझे प्यार कर...

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, मैं हूं आपका हम सफर समर और आज लेजेंड्स की इस महफिल में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज हमने बात की हमारे आज के लेजेंड सेठ गोविंद राम सेकसरिया की। सेठ जी ने एक बहुत सादा जीवन जिया, बहुत नेक काम किए। उनके बाद उनके बेटे कुड़ीलाल जी ने उनका काम संभाला और जब वो उनको बिजनेस संभाला रहे थे उससे पहले उन्होंने 50 लाख रुपए दान कर दिए। ये उस दौर के हिसाब से एक फेबुलस अमाउंट था। इसके अलावा परिवार को भी उन्होंने पूरा वक्त दिया। उनका परिवार एक जॉइंट परिवार था, उनके तीनों भाई साथ ही रहा करते थे। उनको परिवार से इतना प्यार था कि अपने भाई और उनके बेटे के गुजर जाने के बाद वो बहुत दुखी हो गए थे और धीरे धीरे बेहद बीमार रहने लगे और साल 1946 में ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आजाद भारत का सपना तो उन्होंने भी देखा था पर सपना हुआ नहीं पूरा उनके रहते रहते। एक नेक नियत शख्स और विदा हो गया धरती से। अगर वो कुछ और जीते तो जरूर आजाद हुए भारत के विकास को कुछ और पंख लगा देते। भारत विश्व भर में व्यवसाय के क्षेत्र में और मजबूती से आगे बढ़ता। खैर, बाबा नागार्जुन के शब्दों में कहूंगा, जो हो नहीं सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूं प्रणाम। फिलहाल मैं करता हूं आपको भी प्रणाम, दीजिए मुझे इजाजत। बस जाते जाते कुछ वादे करते जाइए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: आना चाहिए। आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन।
1: All is well।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 Live. Have a musti bhara weekend.

0: सुबह सुबह शोर मचा रखा है। बंधु हो, तुम ही हो, सखा हो, ये हो, वो हो। सुबह अभी अभी भजन का एक घंटा खत्म हुआ है। थोड़ा आराम से, थोड़ा स्लो, थोड़ा स्टेडी, थोड़ा धीरे, लेकिन नहीं आते तुम ही दिन
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: लो जी आ गए बड़े बड़े पवित्र पावन लोग आ गए हैं यहाँ पर फ्राइडे वाले सुबह सुबह मस्ती मैडनेस करने के लिए। हमें तो पहचान में नहीं आ रहे हैं, हमें नहीं जरूरत है। सुबह सुबह 7 बज जाते हैं तो सबको पता होता है कि कोई यहाँ पर कोई भी, वैसे भी कोई भी इतना कोई शुद्ध है नहीं, जितने लोग सुन रहे हैं वो भी नहीं
0: और जो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं है ना। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज मस्ती मैडनेस, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज मस्ती मीडिया नेटवर्क, दिस इज रेणुका, दिस इज अंतरा एंड एंड दिस इज फ्राइडे।
2: फाइनली शी रियलाइज्ड
0: सपने में मिलती है ओ कुड़ी, सपने में मिलती है। अंतरा जो सपने में मिलती है वो हकीकत में मिल जाए तो बात ही अलग है, राइट? व्हाट डू यू थिंक?
2: तभी तो उसको कहते ना सपना।
0: हाँ, जो अभी अभी ट्यून्ड है ऑलरेडी, आई एम श्योर। रेडियो मस्ती 24/7, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो गाइस। दिस इज ऑफ कोर्स, आज ये तारीख क्या हो गई है यार, 3 तारीख हो गई है, 3 तारीख जुलाई की।
2: हाँ जी
0: है ना।
2: हाँ, आप जुलाई के इस पावन मौसम में कुछ कहना नहीं चाहेंगी?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, मतलब अभी अभी की बात है, 6 महीने खत्म भी हो गए, आधा साल खत्म भी हो गया है ना, वही जो हम हमेशा बोलते हैं। हाँ
2: यस,
0: चलो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आके बड़ी सारी बातें बतानी है इनको। हाँ ठीक है।
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल. इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
3: टाइम टू रेज द बार।
4: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
2: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
5: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a Masti Bhara weekend.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: गौरव है।
1: जगो जगो जगो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई।

0: जाग जा।
1: चल फोट भाग जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो भी तो सोया पड़ा है।
0: ए विलन बादशाह, ये क्या करता है?
1: अरे कसरत करता है, देखता नहीं क्या तू?
2: अरे इसे कैसे होता है, बेड में कसरत होता है, ये तो मैंने पहले

0: था मुझे, सारा दिन झगड़ा ही कर रहे क्या है?
1: अरे साला, अभी तक लड़े हुए तुम लोग?
2: अरे छोटू, अरे तेरी तो
1: ए, ए, अपन को हाथ नहीं लगाना।

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 Live.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us

0: सुबह सुबह शोर मचा रखा है। बंधु हो, तुम ही हो, सखा हो, ये हो, वो हो। सुबह अभी अभी भजन का एक घंटा खत्म हुआ है। थोड़ा आराम से, थोड़ा स्लो, थोड़ा स्टेडी, थोड़ा धीरे, लेकिन नहीं आते तुम ही दिन
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: लो जी आ गए बड़े बड़े पवित्र पावन लोग आ गए हैं यहाँ पर फ्राइडे वाले सुबह सुबह मस्ती मैडनेस करने के लिए। हमें तो पहचान में नहीं आ रहे हैं, हमें नहीं जरूरत है। सुबह सुबह 7 बज जाते हैं तो सबको पता होता है कि कोई यहाँ पर कोई भी, वैसे भी कोई भी इतना कोई शुद्ध है नहीं, जितने लोग सुन रहे हैं वो भी नहीं
0: और जो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं है ना। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज मस्ती मैडनेस, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज मस्ती मीडिया नेटवर्क, दिस इज रेणुका, दिस इज अंतरा एंड एंड दिस इज फ्राइडे।
2: फाइनली शी रियलाइज्ड
0: सपने में मिलती है ओ कुड़ी, सपने में मिलती है अंतरा। जो सपने में मिलती है वो हकीकत में मिल जाए तो बात ही अलग है, राइट? व्हाट डू यू थिंक?
2: तभी तो उसको कहते ना सपना।
0: हाँ, जो अभी अभी ट्यून्ड है ऑलरेडी, आई एम श्योर। रेडियो मस्ती 24/7, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो गाइस। दिस इज ऑफ कोर्स, आज ये तारीख क्या हो गई है यार, 3 तारीख हो गई है, 3 तारीख जुलाई की।
2: हाँ जी,
0: है ना।
2: हाँ, आप जुलाई के इस पावन मौसम में कुछ कहना नहीं चाहेंगी?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, मतलब अभी अभी की बात है, 6 महीने खत्म भी हो गए, आधा साल खत्म भी हो गया, है ना, वही जो हम हमेशा बोलते हैं। हाँ,
2: यस।
0: चलो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आके बड़ी सारी बातें बतानी है इनको। हाँ ठीक है।
3: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: मैनू चाहिदा ऐसा टीचर चाहिदा, ऐसा सोचने वाला चाहिदा।
2: Oh my God, ये जब पंजाबी बोले वो भी फ्राइडे को ना, मुझे घबराहट होती है अगले 3 घंटे कैसे कटेंगे।
3: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस
2: गैस्ट्रोनॉमिक खबरों के लिए यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर आप हैं मस्ती मैडनेस पर। अंतरा क्या हुआ, क्या क्या की चाहिदा तेनू, तू दस मैनू।
1: हाँ, निमड़ा चाहिदा। ये चाहिदा
2: कुछ।
1: अब किसमें चाहिदा है वो तो फ्राइडे को मत ही पूछो। बट देन बात कुछ ऐसी हो गई कि अगर ऐसे मिनिस्टर्स आने लगे और सोचने लगे, कैसे हम लोग सोचते थे ना कि काश हर यू नो चैप्टर हिस्ट्री का, मैं सोचती थी सोशल साइंस की हिस्ट्री का चैप्टर अगर गाना बन जाता तो मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाती।
2: ये मैंने भी सोचा है कि वो याद तो हो जाता है एटलीस्ट, रटे ही तो मार।
1: करेक्ट। सो वेल, धर्मेंद्र प्रधान इनका नाम है और हाल ही में ये काफी वायरल एक्चुअली न्यूज हुई, जहां पर एक चैप्टर क्लास 5 की टेक्स्ट बुक में, वहां पर जो है ऐश्वर्या राय का ये गाना निमड़ा निमड़ा ऐड किया गया। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली सबने पहले सवाल उठाया कि इतना बड़ा एडिटिंग मिस्टेक कैसे हो सकता है, तुम लोगों ने प्रूफ रीडिंग नहीं की, ये वो। बट देन इट वॉज नॉट एन एडिटिंग मिस्टेक, इट वॉज एक्चुअली डन ऑन पर्पस।
2: सच में?
1: तो उनसे पूछा गया मिनिस्टर साहब से कि भाई ये क्या मतलब, हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप जरा अपने ख्याल बताएं इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि भाई he wanted to honor her dance performance, ऐश्वर्या राय का,
2: इसीलिए उन्होंने उसको कोर्स मटेरियल बना लिया, इज दैट राइट?
1: हाँ, सो यूनिट 4 वाज अबाउट अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। तो सॉन्ग टाइटल में निमड़ा निमड़ा, फिल्म का नाम साल, सिंगर्स फीचरिंग एक्ट्रेस एंड एक्टर ऐश्वर्या राय। आए हाय,
2: चलो थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए सुबह सुबह, कोर्स मटेरियल ही सुन लेते हैं रेडियो मसी 24/7। आई टेल यू,
1: अब चाहिदा ना ऐसा चाहिदा।
2: मैं ऐसे जगह अपने बच्चों को नहीं भेजूंगी। तू भेजेगी? तू बता, खुद बता। माय गॉड।

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows, another day, another time, for your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: 3, 2, 1.
0: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
3: Musti Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: चलिए मैं बिल्कुल इस समय आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेके जाना चाहूंगी और वहां की खबर देना चाहूंगी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अंतरा. इससे ज्यादा तुमने आंखें बड़ी करी ना तो फट के बाहर आ जाएंगी. प्लीज छोटी करो.
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
4: इन्होंने आंखें ना लगाई होती तो पता नहीं ये सेंटेंस क्या ही बन जाता. बट देन दैट्स ओके.
2: रेडियो मस्ती 24/7 पर कुछ भी बोलते हुए यहाँ पर द नो फिल्टर शो. आपके बच्चों के कान बिल्कुल बंद कर लीजिए. कान ओके. यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे इस टाइम पर और लेके चलेंगे, जैसे कि मैंने कहा आपको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. वहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ अंतरा जी.
4: okay.
2: कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जून 2026 में होम मेकर्स, जिनको हाउस वाइफ्स कहा जाता था एक जमाने में, अब होम मेकर्स कहा जाता है, उनका नाम बदल दिया. उन्होंने कहा ये नेशन बिल्डर्स हैं. ओके. क्योंकि आप ये सोचिए कि द लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर प्रोवाइडेड बाय अ होम मेकर कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिस्टिंक्ट एंड कॉम्पेंसेबल हेड ऑफ डैमेजेस इन मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स. अब ये सारी बातें समझने की जरूरत नहीं है. बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आप काम नहीं भी करते तो भी आपकी वैल्यू है 30,000 पर महीने की एटलीस्ट. ओके. और अगर आप नौकरी करते भी हो तो भी ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ये कॉम्पनसेशन जरूर मिलनी चाहिए ऑन टॉप ऑफ योर एक्चुअल इनकम. ऑलराइट. और इन्फ्लेशन को देखते हुए 10% एवरी 3 इयर्स बढ़नी भी चाहिए. और डेफिनेटली डोमेस्टिक केयर सर्विसेज को हम इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं. ओके. कि ये डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट नहीं है, हम इन पे डिपेंडेंट है. मतलब ऐसी महान महान बातें करी हाल ही में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कि मैं तो खुशी हो गई कि टर्मिनोलॉजी बदलने से भी इंसान की कितनी इज्जत हो जाती है. तेको नहीं लगता है? बता.
4: मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं हुई व्हाइल यू वर टेलिंग मी ऑल ऑफ दीस थिंग्स. मतलब इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि हम नहीं नहीं हम जानते हैं, हम तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ होगा वही जो बरसों से चलता हुआ आ रहा है. तुम हाउस वाइफ ही रहोगी.
2: हाँ, तो बेसिकली हाउस वाइफ को होम मेकर कह दो तो एटलीस्ट इंग्लिश तो बन जाती है वो. उसके बाद
4: आई मीन या इफ यू आर हैप्पी विद दैट.
2: जैसे बच्चों की जो रखवाली करने वाली कोई औरत होती है उसको दाई माँ भी कह सकते हैं और उसको साथ ही में गवर्नेस भी कह सकते हैं. इट जस्ट डिपेंड्स. या ऑफ कोर्स ऑन रेडियो मस्ती 24/7. अब आप क्या कहें, मतलब क्या कह सकते हैं हम. बट
4: हाँ हाँ, और फ्री में जो कर रहा हूँ उसको मम्मी भी कह सकते हैं.
2: व्हाट्स इन अ नेम.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: बनके
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
2: यार मैं सोच रही थी कि ये आदमी जो है ये कितने भोले होते हैं, कितने मासूम होते हैं, बहुत ही ज्यादा.
3: तो चाय के 2-3 कप और कॉफी के 3-4, ठीक है, ये सब पी करा.
2: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है.
3: लगता है इसकी नींद खुली नहीं है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम रेडियो मस्ती 24/7. इट इज मस्ती मैडनेस.
2: मैं ऐसे ऐसी खबरें जब मतलब सामने आती है तो लगता है कि हाँ मतलब वी गेट यू मैन, यू आर वेरी वेरी सिंपल हार्टेड. कुछ आप मीन थोड़ी ना करते हो, बस आप तो हमेशा अच्छी चीजें करने की कोशिश करते हो. ये तो लोग हैं जो दुनिया वाले हैं जो गलत समझ लेते हैं आपके इंटेंशन.
3: हाँ मौसी जी.
2: या सो हुआ कुछ ऐसा कि अब मियाँ बीवी के बीच में हुआ झगड़ा, ठीक है. बीवी आर्ग्यूमेंट हुआ तो बीवी चली गई अपने मायके एंड शी वाज स्टेइंग देयर फॉर क्वाइट अ बिट. ठीक है, अब वापस नहीं आ रही बिकॉज ऑब्वियसली वो मनाना और वो सारा चीज हुआ नहीं. बट दिस गाय, दिस पति केम अप विद अ वेरी अनयूजुअल आइडिया एंड ही वाज लाइक कि मैं कुछ अलग करूंगा इस बार, तो बीवी बिल्कुल वापस आ जाएगी इसको करते हुए. सो वो जो इंडिया के गलियों में मिलते हैं ना ये बीन बजाने वाले स्नेक चार्मर्स, या तो उसको उसको थोड़े पैसे दिए और कहा कि ये है मेरी बीवी का घर, इसके घर के सामने तुम बीन बजाओ. तो उसने कहा कि मतलब जब स्नेक चार्मर अपना बीन बजाएगा तो बीवी बाहर आ जाएगी. अब नो इंटरनेट इज इन स्प्लिट कि भाई तू बीवी बुला रहा है, नागिन बुला रहा है.
3: It's called लू चाय उल्फत. तो उसको लग रहा था वो चार्म हो जाएगी विद द चार्मर.
2: हाँ, he only focused on the charm and forgot that it might mean a lot more. That why would you hire a snake charmer and get all the attention?
3: ऊपर से लड़ाई,
2: मोहल्ले वाले बाहर आ गए और ये अपना बजाया जा रहा है. द स्नेक चार्मर डजंट इवन नॉट कैरिंग अ स्नेक आल्सो, व्हिच आल्सो इंटेंडेड कि भाई अब पता ये नहीं लग रहा कि बीवी एक्चुअली वापस आई कि नहीं आई. मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई क्या हुआ इस आदमी के साथ इवेंचुअली.
3: तो जैसे कहते हैं न्यूज चैनल्स, हम इस खबर पर बने रहेंगे और आपको बताएंगे कि चार्म काम किया या नहीं किया. फिलहाल के लिए आसपास के सारे सांप जरूर बाहर आ गए होंगे. ऑन रेडियो मस्ती गाइस, अगली खबर, क्योंकि अब सांपों की शुरू हो ही चुकी है. सो लेट मी टेल यू कि 300 सांप किधर थे जो निकल के बाहर आए. गुड मॉर्निंग.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: और कुछ ही देर पहले हमने बात करी थी स्नेक चामर की, और स्नेक चामर का इस्तेमाल हुआ सांपों को बाहर निकालने के लिए नहीं, लेकिन अंतरा जी कहती हैं कि बीवी को घर लाने के लिए. नाउ दैट वाज अ वेरी रॉन्ग मूव बाय द वे, सोचे समझे बिना.
3: आई एम श्योर. क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो.
2: This is absolutely crazy खबरें इस शो पर आपको मिलती हैं. This is called Musty Madness. और अगली खबर जो है चाइना से आ रही है, जहां पर 300 पाइथन्स,
4: 300 छोटे भी नहीं, सो बिग
2: पाइथन सारे के सारे. एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि तू सोच, घर में 300 पाइथन रखे हुए हैं तूने, ठीक है, पाल रहे हो तुम, ब्रीड कर रहे हो, और obviously it is not allowed, right? लेकिन किसी को पता नहीं लग रहा, सालों साल तक तुमने रखा हुआ है, there is no problem, किसी को पता नहीं लग रहा है. लेकिन किसको पता लगा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को. पूछो कैसे पता लगा?
4: पता लगेगा.
2: हाँ, बिकॉज हुआ कुछ ऐसा कि ये जो पाइथन्स है ना, इनको रखने के लिए हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, और वो हाई हीट से मैसिव पावर कंजम्पशन एक घर का हो रहा है. अब उस एक घर का ऑब्वियसली हाईलाइट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कि भैया सर्दी हो गर्मी हो, ये लोग हाई हीट कंजम्पशन क्यों करते हैं, देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट? सो वहां से उन्होंने सोचा जरा जाके तहकीकात करी जाए, और फिर पता लगा कि भाई वहां पर सीरियस एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ को, 300 पाइथन्स को रखा जा रहा था. और वो आदमी मतलब बड़े मजे से कि मैं तो भाई ब्रीडिंग करता हूँ. भाई साहब, आप ब्रीडिंग करते हो, आप क्या करते हो, ये सब अलाउड तो है नहीं. लेकिन इमेजिन ऑफ ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, ही नेवर थॉट कि बिजली डिपार्टमेंट पकड़ लेगा मुझे, और आसपास वालों को पता भी नहीं लगेगा.
4: भाई, व्हेन यू डू अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड हैपेंस टू यू आल्सो.
2: एब्सोल्युटली. और एक छोटा सा सांप जो वहां से एस्केप हुआ था वो भी लोगों की नजर में आया ही था, लेकिन वो
4: पाइथन छोटा,
2: हाँ छोटा बेबी पाइथन, 2-3 फुट का बेबी पाइथन.
4: वाह वाह.

0: 8 बजे के उस पर एक चीज कहना चाहूंगी कि गाली देना पाप है, नदी किनारे सांप है।
1: ओ यार, कैन वी लीव द सांप अलोन नाउ?
2: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है
1: पहले सपेरे की खबर, उसके बाद 300 सांपों की खबर, और अब सांप का ही मजाक उड़ाया जा रहा है। देखो स्टूडियो में ये सब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा जी, क्या खबर है बताइए मस्ती मैडनेस में अगली आपकी।
2: हाँ, अगली बार मैं रेणुका को बोल के जाऊंगी कि पता नहीं हर आहट पे इनको, सरसराहट पे इनको लगेगा कि कुछ शायद कोई आया।
1: बिल्कुल है ना? बिल्कुल, why not? बिल्कुल लगेगा।
2: तो भाई कुछ ऐसा हुआ, चंद्रपुर की खबर ले आई हूँ। चंद्रपुर में कुछ ऐसा है कि एक 85 ईयर ओल्ड औरत, ठीक है, 3 बार पुलिस कंप्लेन कर चुकी, वो बहुत परेशान 3 बार वो ऑलरेडी कर चुकी, फिर भी उसका केस क्लोज कर दिया गया। बहुत ही दुखी। अपने स्टेप सन से नहीं परेशान वो, अपने पड़ोसी से नहीं परेशान वो परेशान है तोते से।
1: तोते?
2: यस, क्योंकि 2 साल, दो साल भी क्या, आई थिंक शी हैज काउंटेड द डेज ऑल्सो, फॉर 730 डेज दिस तोता हैज अब्यूज्ड दिस वुमन लेफ्ट राइट सेंटर।
1: ओके,
2: या भाई, तोते का नाम हरियाल, ठीक है, ये जो इसका स्टेप सन है, उसने 2 साल की ट्रेनिंग दी इस हरियाल को कि जैसे ही ये जो मेरी स्टेप मदर दिखे ना, शुरू हो जाना। 2 साल की ट्रेनिंग है, जब भी जाना भाई जो है उसके सामने से जाती, हमारा ये तोता चोच खोलता और शुरू हो जाता अपना XYZ, चल रहा है। अब क्या है कि पुलिस ने कहा कि ठीक है लेके आओ, तीनों पार्टी लेके आओ, तोते को भी लेके आओ। अब जानाबाई हरियाल यानी कि तोते के सामने खड़ी हुई है, तोता कुछ बोल ही नहीं रहा।
1: ओ, वहां नहीं बोल रहा, पुलिस के सामने
2: बोला ही नहीं।
1: We love that. अच्छी ट्रेनिंग दी है और कुछ होना हो।
2: I like, out of all the places, how smart of the tota.
1: He knows. भाई देखो, ऐसी बात है, this is abuse of animals. It is not abusive animal.
2: Yeah. So police said that no law covers parrot abuse. So case is closed. But हरियाल जो है वो वापस सुरेश के पास नहीं गया, उसको forest department को दे दिया गया।
1: चलो कुछ तो punishment मिली, वहां जाके गालियां दे रहा होगा किसी को।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: आज क्योंकि सुबह से सांपों की बातें हो रही हैं तो मुझे लगा एक आखिरी दाव यहाँ पर मैं भी लगाना चाहूंगी. Unless Antra can find another snake खबर. Well, this is Radio Masti 24/7, the no filter show, Masti Madness.
2: Masti Madness, जहाँ न्यूज भी होती है. Gas! How are these sneaking in? ऐसी खबरें कहाँ से आ रही है?
1: Sneaking in, sneaking नहीं होगा. तुम्हें पता है अंतरा, एक आदमी चाइना में 6 महीने बाद काम के लिए गया था. 6 महीने ही वॉज ओवरसीज. ओके, एंड ही केम होम. अब घर आते ही तू सोच, मतलब मैं तेरे को अगर आज फोटोज दिखा दूं इसकी तो बहुत ही हिल के रह जाएगी तू. क्लस्टर्स ऑफ वाइट स्नेक एग्स उसके पूरे घर में. ओके, मतलब तू ये सोच, हंड्रेड्स ऑफ स्नेक एग्स उसके घर पे अरेंज नीटली ऑन एक पुराना सा ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर. मतलब इमेजिन, बात ये नहीं है कि चलो सांप घुस गया, सांप ने अंडे दे दिए. इट्स लाइक 15-15 अंडों का क्लस्टर बना हुआ है. 15 यहाँ, फिर थोड़े डिस्टेंस पे 15 और, फिर 15 और. इट्स लाइक हाउ, इट वाज जस्ट टू नीट, राइट? सो एवरीबॉडी वाज लाइक, इट डिडंट क्वाइट मेक सेंस टू पीपल, क्योंकि जैसे उसने वो फोटो डाली ऑन द इंटरनेट, दे सेड यार ये कैसे हो सकता है. इट सीम्स लाइक कोई स्नेक फार्म जो आसपास है उसने लाकर यू नो ऑनलाइन ट्रैफिक जनरेट करने के लिए ये सब किया है. और यहाँ वो आदमी ने खुद ही रख के यू नो जस्ट टू बी पॉपुलर किया है, बिकॉज ठीक है, अनऑक्यूपाइड है, घर में कोई नहीं है, डैम्प घर है, वो स्नेक ब्रीडिंग सेशन हो सकता है. लेकिन अंडे गिन गिन के 15-15 सांप कैसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रख रहा है इतने प्यार से? हाउ, व्हाट डू यू थिंक?
2: दिस इज लाइक टू यूनिक फॉर मी. आई मीन मस्ती मैडनेस पे ऐसा, मतलब हम लोग उस स्टेट से बाहर निकल चुके हैं कि हम नॉर्मल चीजों के स्मगल और इनकी बात ही नहीं कर रहे. हम सांपों और इन सब चीजों में पहुंच चुके हैं कि लोग इसको भी ऑर्गेनाइज कर करके रख रहे हैं.
1: इट्स ओनली टू गो वायरल, क्योंकि दुनिया में अकेलापन बहुत है. इसीलिए रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. डियर मस्ती, दिल से. ट्यूजडे 5 बजे.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: कभी कभी ऐसे explanations के साथ लोग आते हैं ना कि मतलब उनको कहने का मन करता है कि भाई एक काम कर, तू मत ही कर.
2: सही बात है भाई, तू मत ही कर.
3: This is Masti Madness on Radio Masti.
2: मुझे कुछ नहीं समझ आया इसने क्या बोला, लेकिन हाँ एंड में भाई तू मत ही कर. Radio Masti 24/7 Masti Madness. अगली खबर अंतरा जी. अंतरा क्या क्या कौन नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है बताओ.
1: ये रेडियो का वो वाली चीज कर दी, जब मुझे ना क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आती थी तो मैं टीचर का लास्ट टू वर्ड्स पकड़ के वही रिपीट कर देती थी. बट देन कमिंग बैक टू दिस मन भाई, ये बंदी जो है इसको सिग्नल पे रोका गया, ठीक है, क्योंकि ये इस वजह से ये टर्न लेते वक्त शी वाज नॉट गिविंग इंडिकेटर्स. नाउ वी ऑल नो द वन हु डोंट ड्राइव आल्सो. सिंगापुर में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जिनके पास गाड़ी नहीं है, बट वी स्टिल नो कि भाई बेसिक कॉमन चीज है कि जब आप टर्न कर रहे हो तो आपने सिग्नल देना है और उसके बाद टर्न करना है.
2: बिल्कुल.
1: तो बहन को पकड़ा गया. अब बहन तो लॉजिक के साथ तैयार है, और वो होता है ना कुछ लोग आपको कुछ भी बोलेंगे बट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, और वो कॉन्फिडेंस देख के आपको लगेगा कि भाई तू किस बात पे कॉन्फिडेंट है इतना, मतलब कहां से आ रहा है ये.
2: एग्जैक्टली.
1: सो शी गेव द लॉजिक, ठीक है, कि डिफेंस में उसने कहा कि शी नेवर यूजेस हर टर्न सिग्नल बिकॉज वो कहां जा रही है इज नोबडीज बिजनेस. वो टर्न करके जो फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, किसी इट्स नोबडीज बिजनेस. सो शी इज नॉट गिविंग दोस टर्न सिग्नल्स. फिर बहन को बताया गया कि बहन वो तेरे लिए नहीं है, इट इज फॉर द पीपल, बाकी लोगों के लिए बहन.
2: दैट इज अ ट्विस्ट. That's the whole thing. लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यार, थोड़ी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. मैन परफेक्ट.
1: ये लोग बहुत बहुत बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज्ड है.
2: नो पन इंटेंडेड.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
6: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: भैया इस टाइम पर ना मैं खबर बताना चाहती हूँ अपनी पर्सनल जिंदगी से, विच इज ऑल्सो अ वेरी यूनिक खबर. इट इज रियली फनी. सो व्हाट हैपेंड, आई मीन अ फ्यू डेज बैक, मेरे घर के सामने की जो लाइट्स हैं मेरे फेंस की, वो किसी ने आके तोड़ दी थी सोलर लाइट्स, राइट?
1: ओह ये आई नो दिस वन. हां, यू वर वेरी वरीड दैट डे.
0: एग्जैक्टली. सो उन्होंने सोलर पैनल्स की लाइट्स तोड़ दी और उसके बाद में इधर उधर फेंक दी जो स्पॉट लाइट्स लगी हुई थी. आई वॉज वेरी एंग्री बिकॉज एवरी इवनिंग द लाइट हैज टू स्विच ऑन एंड इट डिड नॉट. देन आई रियलाइज दिस इज वैंडलिज्म. सो आई रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया. मैंने उनको बोला कैमराज चेक करो. मेरे अपने खुद के बाहर का कैमरा मैंने चेक किया तो मुझे वहां पर दो छोटे छोटे बच्चे कुछ सिर्फ नजर आए, बट करते हुए कुछ नहीं नजर आए, सिर्फ खेलते हुए नजर आए वहां पर बाहर. तो मैंने कहा ठीक है यार, देखा जाएगा, बट मैंने भी छोड़ा नहीं. अब इसी हफ्ते में मैंने पता फिर से लगाया तो मुझे मैनेजमेंट ने कहा आई थिंक वी हैव फाउंड योर कल्प्रिट.
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी.
0: मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई कि भैया चोर पकड़ा गया है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा टेंशन ये थी कि ये जो भी है अगला क्या कर सकता है, राइट? गुड मॉर्निंग मस्ती मैडनेस. और वो निकला एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का. ऑल राइट. अब मैनेजमेंट ऑफिस को मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप प्लीज उसके पेरेंट्स को कहिए मुझसे बात करें, क्योंकि आप तो मुझे नंबर दे नहीं रहे हो. सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आगे से ये दोबारा नहीं होगा. दैट्स इट, राइट? तो फादर का फोन आया, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, कि नहीं मेरा बच्चा जरूर नॉटी है लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है. मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके. मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है. मुझे कहा गया है कि तुम्हारा ही बच्चा है जो है भाई. तो मैनेजमेंट ऑफिस ने उनको जो भी कहा वो काफी गुस्से में था, लेकिन उसने कहा कि जैसे मेरा बच्चा स्कूल से आएगा मैं उस बच्चे से पूछूंगा, और अगर ये सच है तो फिर आई विल मेक श्योर कि मैं तुम्हारे पैसे जितना नुकसान हुआ है वो भी दूं, और साथ में मेरा बच्चा भी तुमसे माफी मांगेगा. मैंने कहा भाई इतनी कोई बात नहीं होगी, इट्स ओके, चिल. बट ही वाज लाइक वेरी प्रिंसिपल्ड. उसके आगे की कहानी सुनने के लिए आप ये वाला गाना सुने और वापस आए. ऊंचा लंबा कद नहीं है जो इस बच्चे का,
1: ये यही करने वाली है. मुझे पता था, मुझे पता था यही करने वाली है ये. ओ हो, अब वेट करना पड़ेगा.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार

0: Alpha, the newest chapter in the YRF spy universe.
1: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
0: बोर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।

0: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सोलर पैनल्स।
1: इतना इंट्रो की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हाँ फिर क्या हुआ
2: मस्ती
0: न्यूज़ इट इज लाइक जल्दी बताओ क्या हुआ। हाँ तो फिर फाइनली उसके डैडी का, बच्चे के डैडी का मुझे आया फोन शाम को, क्या हम घर आ सकते हैं। और मैं उसी टाइम समझ गई कि बेटा अब ये घर आ सकते हैं का मतलब ये है कि तो वो छोटा सा
1: बच्चे ने मान लिया है।
0: हाँ तो छोटा सा बच्चा साथ में आया, ठीक है एवरीथिंग कूल। मैंने उसे देख के ही मुझे लगा यार प्लीज यार इसको क्या आप एक दूसरे को मतलब मैं क्या गुस्सा तो नहीं कर सकती मैं इसको, ठीक है इज वेरी क्यूट इज लुकिंग एट मी सॉरी। फिर उसको ज्ञान चेपा गया, बाप अपनी अपनी सारी की सारी जितनी प्रिंसिपल्स थे जिंदगी के उसको समझा रहा था। मैं भी धीरे धीरे मैंने सिर्फ पूछा मैं तूने क्यों किया है क्यों किया तूने हाँ। तो बस इसका जवाब दे दे। तो बच्चे ने मुझे बोला कि भैया मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि माय फ्रेंड्स वर नॉट प्लेइंग विद मी। तो फिर मुझे और दुख हुआ कि बेचारा अकेला था, लोनली था, गुस्से में तोड़ दिया। मैंने कहा बट मैंने तो कुछ नहीं तुझे कहा था ना, तूने मेरे घर पे क्यों नुकसान किया। एनीवे ऑल दैट हैपेंड एंड देन आफ्टर अबाउट 15-20 मिनट्स ऑफ भाषण व्हाटएवर टू गिव टू द किड एंड द किड सेइंग सॉरी द फादर सेड व्हाई डोंट यू कम ओवर समडे, कम ओवर फॉर अ ड्रिंक, कम ओवर फॉर डिनर, ये वो यू नो वी लव टू हैव यू ओवर, ठीक है और प्लीज मुझे बताओ कितने पैसे देने करके। मैं बाहर छोड़ने जा रही थी, द लिटिल वन लुक्स एट मी एंड यू नो व्हाट ही सेज, Why don't you come over for a drink now? What? This 5-year-old tells me, Why don't you come?

0: आज तो तू चला जा, तो तू डांट खा के जा रहा है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं।
1: हाउ क्यूट। अब मतलब रेनुका के चाहने वालों का रेंज, एज रेंज इतना ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है ना कि मैं बता ही नहीं सकती।
0: सो क्यूट, इमेजिन अ 5-year-old सेइंग कम ओवर फॉर अ ड्रिंक।

सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। सिंगापुर, सोचिए कि अगर कल आप इंटरनेट पे कोई ऐसे वीडियो देख रहे हैं जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल लगे, तो आपके दिमाग में क्या आएगा रिएक्शन? पहला वाओ, या फिर आप बोलेंगे अरे यार ये तो एआई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल ना दूसरा वाला आंसर इज ज्यादा कॉमन है ना। अभी हाल ही में एक बहुत ही अजीब सा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसमें दिखने वाला एक क्रीचर जो है बहुत अजीब है, मतलब वो कुछ तो शार्क के जैसा है, कुछ डॉग के जैसा, और कुछ लोगों ने तो मरमेड की भी याद दिला दी इसको देख के। वीडियो देख करके लोग जेन्युइनली आर वेरी डिस्टर्ब्ड, पर डिस्कशन क्रीचर पे कम है और दूसरे सवाल पर ज्यादा है, क्या ये एआई जनरेटेड है? मुझे लगता है ना कि हमारे टाइम की सबसे फैसिनेटिंग बात हो रखी है। एक वक्त था जब हर चीज पर आसानी से यकीन कर सकते थे, आज हम हर चीज पर शक पहले करते हैं। एआई इतना रियलिस्टिक कंटेंट क्रिएट कर रहा है कि कभी कभी असली और नकली के बीच में लाइन ही ब्लर हो जाती है। वो लाइन भी है कि नहीं है, एआई की जनरेट क्यों हुई है ये भी पता नहीं लगता है। एंड इसी वजह से ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी भी सामने आई है कि शायद एआई हमें हर चीज पे डाउट करना सिखा रहा है, इसीलिए एआई बना है कि कुछ चीजें जो आपको सच में नहीं देखनी चाहिए उनको देख के आपको लगे अच्छा ये तो एआई है। आई जस्ट डोंट बिलीव इट, पर वो सच में है, बट यू डाउट इट बिकॉज दैट्स एआई, ऐसा आपको लगता है। सोचिए अगर कल को सच में कोई अनयूजुअल सी चीज हमारे कैमरा में कैप्चर हो जाए, क्या लोग उस पर बिलीव करेंगे? तुरंत कह देंगे एआई है, फेक है। इसी वजह से दिस वीडियो इज वेरी अनसेटलिंग। आई मीन देयर नॉट जस्ट डार्क क्रिएचर्स, पता नहीं क्या है। डर क्रिएचर्स का नहीं है, डर ये है कि हम ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां पे सबूत भी कभी कभी काफी नहीं लगते, पता नहीं असली है कि नकली है। है ना, मैं हूं मुग्धा, स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: सिंगापुर, जरा इमेजिन करिए, एक पूरा शहर है, उसमें घर है, अस्पताल है, गैस स्टेशन है, होटल है, रोड्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, पर एक प्रॉब्लम भी है इतनी सारी चीजों के साथ, वहां कोई रहता ही नहीं है। और फिर भी उस शहर में रोज क्राइम्स होते हैं। दरअसल FBI ने ना अलबामा में 22,000 स्क्वायर फीट का एक आर्टिफिशियल टाउन बनाया जिसका नाम है किनेटिक या काइनेटिक साइबर रेंज। ये एक ट्रेनिंग टाउन है जहां पे साइबर अटैक्स को रियल लाइफ कंडीशंस में सिम्युलेट किया जाता है। इस फेक टाउन में बताया कि हॉस्पिटल से लेकर के पावर कंपनी तक सब कुछ इंटेंशनली कनेक्टेड रखा गया है ताकि इन्वेस्टिगेटर्स रैंसमवेयर और हैकिंग अटैक्स की ना प्रैक्टिस कर सके। अमेरिका में सिर्फ एक साल में साइबर क्राइम लॉसेस जो है वो 20.9 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए। ये जो है प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो 26% ज्यादा है। और इसी वजह से FBI को लगा कि क्लासरूम ट्रेनिंग अब काफी नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है और एक लेसन भी है। पहले पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ता था, आज के क्रिमिनल्स कभी कभी किसी और ही कंट्री में बैठे होते हैं, ना कोई फिंगरप्रिंट है, ना कोई आई विटनेस, ना कोई गेटअवे कार, सिर्फ कोड्स होते हैं। और शायद इसीलिए फ्यूचर की पुलिसिंग ना वो बदल रही है। एक वक्त था जब ट्रेनिंग फायरिंग रेंज में होती थी, आज की ट्रेनिंग सर्वर रूम्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स में हो रही है।

0: वक्त बदल रहा है, क्राइम बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, पुलिस भी बदल रही है भाई.
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore. Check it out.

0: कितनी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, आज की दुनिया में लोग आपका चेहरा देखने से पहले आपकी आवाज सुनते हैं, हमेशा ही ऐसा ही होता है राइट? फोन कॉल पे, वॉइस नोट्स पे, पॉडकास्ट में, प्रेजेंटेशंस में, कोर्स इंटरव्यूज में, और कभी कभी सिर्फ एक आवाज ही काफी होती है किसी को याद रह जाने के लिए या किसी के याद रह जाने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोग अपनी आवाज को कभी डेवलप ही नहीं करते। हम कम्युनिकेशन सीखते हैं लेकिन इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन बहुत कम लोग सीखते हैं। कम्युनिकेट तो हम सारे ही कर लेते हैं। एंड दिस इज द रीजन मस्ती मीडिया नेटवर्क लेकर आए हैं द आरजे एकेडमी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे सिर्फ रेडियो होस्टिंग नहीं बल्कि वॉइस प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स और माइक्रोफोन कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ इन पे काम किया जाता है। प्रोग्राम हाइब्रिड फॉर्मेट में अवेलेबल है, ऑनलाइन लर्निंग के साथ में स्टूडियो एक्सपीरियंस भी मिलता है, एंड बिगिनर से एडवांस तक का पूरा एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल फोकस सिलेबस है और 14 साल से ऊपर और 14 साल तक के बच्चे से ऊपर के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। सबसे एक्साइटिंग बात, अगर आप सिलेक्टेड वंस में आते हैं तो आपको लाइव शो होस्ट करने का मौका मिलेगा एक रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में बैठ के। आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो फील कैसा होता है व्हेन यू एंटर इन अ स्टूडियो ऑफ अ रेडियो स्टेशन, और लाइव शो तो भाई सब बात ही छोड़ दो। तो क्या ना कि कभी कभी कुछ करियर एक अपॉर्चुनिटी से नहीं होते हैं, एक आवाज से शुरू होते हैं। तो अगर आप भी अपनी वॉइस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले पहला कदम फॉलो करिए, एक अपना प्यारा छोटा इंट्रोडक्शन लेकर के info@radiomasti.com.sg पर भेज दीजिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, उसके आगे का हम संभाल लेंगे। इंट्रो लिखना है और भेजना है info@radiomasti.com.sg पर, मेल कर दीजिए। ओके okay?

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे
2: एक्साइटेड
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: और इसी के साथ आज की मुलाकात को यहीं पे थोड़ा सा पॉज देते हैं। उम्मीद है कि आज की बातों में आपको कुछ मुस्कुराने की वजहें जरूर मिली होंगी, कुछ सोचने के लिए मिला होगा और शायद एक दो कहानियां आप अपने साथ भी लेकर जा रहे होंगे जो आपके दिल दिमाग में रह जाएंगी। याद रखिए, दिन कितना भी बिजी हो, खुद के लिए 2 मिनट निकालना कभी मत भूलिएगा। मैं हूँ आरजे मुग्धा एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने दिन में से इतना वक्त मेरे लिए निकाला, हमारे शो के लिए निकाला, इस मस्ती हैंग आउट के नाम किया। फिर मिलेंगे इसी फ्रीक्वेंसी पर इसी दोस्ती के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को थोड़ा हल्का रखिए। बाय सिंगापुर, टेक केयर।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल. इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh May.

0: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
1: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
2: मुझे चांद पहले चलो,
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेली है।
3: जोश में रहो।
4: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live pe.
1: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Raat akeli hai, aankhein bandi hai.
3: Raat akeli hai to kya? Hum to aapke

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया।
1: जादू है, नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
3: जादू।

बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: जादू है नशा है
1: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: ये वो एक पे पिक्चर आ रही है ना,
2: कौन से?
1: बॉडीगार्ड, उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है।
3: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
4: तेरी।

0: भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: पैसा, अरे मनी मनी, लगता है अपना भी टाइम फाइन।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: साथ शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
0: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.